कुछ कुछ लोगों के जब हम घर जाते हैं तो इतनी परफेक्शन के साथ उन्होंने घर डेकोरेट किया होता है कि हमें ना कॉम्प्लेक्स फील हो जाता है कि हम कहाँ आ गए, हम खुद ज्यादा गंदे तो नहीं लग रहे कि इनका घर गंदा हो जाए। जैसे मॉल्स में कई बार नहीं होता है कि जब भी आप अच्छे से अच्छा तैयार होकर भी जाओ, वहां पर जाकर ना फीकापन ही आ जाता है कि यार ये कपड़े तो पुराने हो गए, कुछ नए लेते हैं ना। तो ऐसी चीजों में परफेक्शन नहीं हो सकता, आप चाहे जितने बढ़िया तैयार हो जाओ, जितने बढ़िया घर को रख लो, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। पर हाँ, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो अपनी फिल्मों में कमी बिल्कुल नहीं करना चाहते और वो परफेक्शन की वजह से बार बार बार बार बार बार टेक्स करवाते रहते हैं, राइट? अगर हम साउथ के डायरेक्टर्स में बात करें तो SS राजामौली, जिनकी वाराणसी मूवी जो है बहुत जल्द आने वाली है, और सुनने में आया है महेश बाबू जो कि साउथ के वन ऑफ द स्टार है, उनके संग उन्होंने एक ही सीन ना 97 रीटेक्स के साथ किया है। मतलब मजा नहीं आ रहा था उन्हें, 97 रीटेक, समझ सकते हैं आप? हाँ, खैर ये सबका अपना अपना तरीका है। फिलहाल आपके तरीके में और क्या तरीके ऐड हो सकते हैं मैं बताती हूँ थोड़ी सी देर में। RJ नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टका टक। जोश में
0: रहो। क्या आपको ओसीडी है? आप भी साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक्ड रहते हैं? तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए जो कि इंडियन रेलवेज की वायरल हो रही है। हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, उस वीडियो में मैं साफ देख पा रही हूँ कि इंडियन रेलवे के रेलवे ट्रैक्स पे खड़ी हुई ये ट्रेन बहुत अच्छे से धोई जा रही है, उसका वॉश चल रहा है। पर कैसे? ड्रोन्स जो है ना, उस ट्रेन के ऊपर आकर उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, हर कॉर्नर पे पानी डाल रहे हैं, और ऑटोमेटिक स्प्रेज जो है ना, वो अपना जो कह सकते हैं सोप है ना, वो उस पर डिस्पेंस कर रहे हैं, और इस तरह से जो पूरी ट्रेन है ना, उसे धोया जा रहा है चकाचक। वाओ, अब ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में आ चुकी है और इस तरीके से क्लीनिनेस रखने के लिए ये सोचा जा रहा है। आज इन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: देखो सोशल मीडिया पे चीजें ना इतने ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इमोशनल करके दिखा दी जाती है कि हम चाहकर या ना चाहकर सबकॉन्शियस माइंड से ना उसे वैसे ही देखने लगते हैं कि नहीं नहीं बात तो बड़ी गंभीर है यार, ना ना ना ना ना ना आप हल्के में नहीं ले सकते, इनकी तबीयत तो ज्यादा खराब लग रही है। सो अभी रिसेंटली आपको पता है मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बता भी चुकी है कि पद्म भूषण अवार्ड सेरेमनी जो इंडिया में रखी गई है उसे बहुत ही डेलिकेट तरीके से हमेशा की तरह जो है ना इम्प्लीमेंट किया गया है। बहुत ही आइकॉनिक एग्जाम्पल्स जो रहे हैं, इंडस्ट्री के जो गिवर्स रहे हैं उनको इस अवार्ड से सम्मान किया गया है। इसमें नाम था अलका याग्निक जी का। अब अलका याग्निक जी की तबीयत जो है ना वो 2 साल से थोड़ी खराब चल रही है, मतलब हेयरिंग डिसऑर्डर तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं उन्हें बहुत चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन वो वहां अवार्ड सेरेमनी के बाद व्हील चेयर पर नजर आई तो लोगों ने कंसर्न दिखाना जताना और उसे और ज्यादा एग्जैजरेट करना शुरू कर दिया। तो जिसके बाद अलका याग्निक ने एक बयान भी डाला कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी जिस वजह से मैंने व्हील चेयर लिया, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। सो मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: द न्यूएस्ट चैप्टर इन द YRF स्पाई यूनिवर्स।
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
1: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo usse maar deta hai.
1: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
4: क्या जी?
5: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी, क्या बात जी।
5: Order today from GG Mart, your personal grocer.

की चीजें करना पसंद है और आप उससे सेटिस्फाई भी हो जाते हैं और बार बार उस चीज को दोहराते रहते हैं, तो मतलब आप अपनी लाइफ में काफी सॉर्टेड इंसान हैं। मतलब उतने ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं जितना दुनिया वाले रहते हैं। ओहो, मतलब अल्टीमेटली यू आर स्पेशल मेरी जान। क्या बात है, क्या बात है आप। चलिए चलिए, आप स्पेशल हैं और इसी स्पेशलिटी को बरकरार रखते हुए मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर कुछ और भी बात करेगी। Don't go anywhere.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

आपका जो टैलेंट है, जब तक आप घर की चार दीवारी से बाहर नहीं दिखाओगे तो काम कैसे चलेगा? चलिए बताइए, आपको जानने के लिए, आपकी नॉलेज को पहचानने के लिए आपको थोड़ा तो बाहर निकल कर आना पड़ेगा, राइट? सो मैं आज अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ एनीवेज बताना चाहूंगी कि आपका मतलब दीवार से बाहर निकलना, अपने टैलेंट दिखाना, मतलब कि सिंगापुर के सबसे स्मार्टेस्ट गेम शो में पार्टिसिपेट करना, जो कि मसी मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आए हैं, द लायन सिटी चैलेंज। इसमें आपका आईक्यू लेवल, वो चाहे जनरल सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, लाइफस्टाइल से, बॉलीवुड से, सिंगापुर से, अक्रॉस द ग्लोब से, मतलब हर तरह का जो आपका आईक्यू लेवल है वो सवालों, जवाबों और गेम्स के साथ चेक किया जाएगा, और बदले में बहुत सारे गेम्स, कैश प्राइजेस भी आपके हो सकते हैं। तो क्विकली पार्टिसिपेट कीजिए, जिसके लिए आपको टेक्स्ट करना है या व्हाट्सएप करना है लायन LION टाइप करके 9151 8963 पर। मैं आरजे नूपुर मसी मॉर्निंग शो पर।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाह जी, क्या बात जी.
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको लग रहा था कि ये मूवी तो अब नहीं आएगी, इसको तो बनाया ही नहीं जा रहा है, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा रहा है। सो मैं आपको बता दूं, सोचा भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है। कौन सी मूवी के बारे में? मुन्ना भाई MBBS राइट, इसके थर्ड पार्ट को हल्के हल्के तरह से लिखते लिखते शेप अप किया जा रहा है, राइट। सो इसके डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अभी तो हम तीसरा पार्ट सोच रहे हैं, लेकिन इसका पहला पार्ट आया था 2003 में, दूसरा पार्ट आया था 2006 में, और हमारी कोशिश है कि हम इसे पांचवें पार्ट तक लेकर जाए। तो अगर ऐसी अफवाह आपने सुनी है कि इस मूवी को नहीं बनाया जा रहा है, तो ये मात्र एक भ्रम है। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर
2: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, अंधा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: They were not chosen.
2: They were created.
3: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलावेंगे.
4: Alpha.
1: The newest chapter in the YRF spy universe.
5: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
1: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
6: Alpha program उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
1: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
7: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
8: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: देखो, कमा हर कोई सकता है, लेकिन कमाने के तरीके आने चाहिए। वैसे तो आप सिंगापुर में एक छोटी सी चाय की शॉप भी लगा लो ना, आए हाय, आपकी यहाँ लाइन ही लग जाएगी। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। एनीवेज, मैं आज नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अब देखो, कहानियां तो बहुत सारी हो जाती है कि चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो ही जाता है कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा है। हाँ, सो डेफिनेटली मैं आपको इसका एक एक्सेप्शनल पार्ट बताती हूँ। मैं आज नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर हम इंडिया की वन ऑफ द धार्मिक सिटी की बात करें तो दैट इज ऋषिकेश। ओके, तो वहां पे बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे टूरिस्ट अक्रॉस द ग्लोब पहुंचते हैं जस्ट टू एंजॉय, है ना। तो ऐसे में एक लड़के ने मात्र 3 घंटे के अंदर 2350 रुपए कमाए। कैसे? उसने एक आरती ली, थाली ली, उसमें टीका वगैरह लिया, और वो होता है ना हाथ का कलावा रेड कलर का, राइट, वो सब लिया और वो निकल गया घाट के आसपास। और उसने फॉरेन से आए हुए लोगों के इतने ज्यादा तिलक किए, टीके लगाए, हल्दी कुमकुम किया कि उसने सिर्फ 3 घंटे के अंदर 2350 रुपए कमा लिए। तो इस तरीके से उसकी सोशल मीडिया पर जो रीच है ना, वो काफी बढ़िया निकल कर आई। और उसने बताया कि ये भी एक तरीका हो सकता है पैसा कमाने का, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो। क्या बात है, क्या बात है। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

कि हम ये करेंगे। हाँ जी देखो, वो रियलिटी शोज जो है ना वो करते आए हैं। आपको पता ही है सलमान खान जो है वो साल में एक बार स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसा ही हुआ था एक बार, और उन्होंने ना ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए मतलब तैयारी भी नहीं करी थी, ठीक है। तो जब तैयारी ही नहीं करी थी तो उनसे को-स्टार ने पूछ लिया कि भाई तुमने तो तैयारी नहीं करी है, अब क्या करोगे। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे कोई भी स्टेप नहीं याद आएगा तो मैं अपनी शर्ट उतार के डांस करने लगूंगा। तो मतलब शर्ट उतार देने से कोई उनके डांस स्टेप पर ध्यान भी नहीं देगा और उनका काम भी हो जाएगा। हाँ, जस्ट लाइक दैट सलमान खान अपनी फैन फॉलोइंग काम ले ही लेते हैं। चलिए ऑन दिस नोट मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, अब मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
4: आर यू रेडी?
5: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
4: Monday blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh
6: Mera Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: कभी नोटिस किया है, नया महीना शुरू होते ही दिल में एक अलग सी फ्रेशनेस आती है, जैसे लाइफ ने क्वाइटली कहा हो, चलो एक और चांस ले लो। बस वही फीलिंग लेकर शुरू हो रहा है आज का दिन, आज का शो। हेलो सिंगापुर, वेलकम टू जुलाई एंड दिस इज मस्ती हैंग आउट। मैं हूँ मुग्धा आपके साथ। आप ऑफिस से निकल रहे हो, डिनर बना रहे हो, ड्राइव कर रहे हो या बस हेडफोन्स लगा करके थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर रहे हो, आई एम रियली हैप्पी कि आप यहाँ पर हैं मेरे साथ। वैसे 1 जुलाई को दुनिया कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी सेलिब्रेट करती है। एक है कनाडा डे, जो एक कंट्री की आइडेंटिटी और उसके प्राइड को सेलिब्रेट करता है। एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल जोक डे, क्योंकि ऑनेस्टली कभी कभी एक अच्छा जोक ना दिन को हल्का और खूबसूरत बना देता है। आज के शो में भी बहुत कुछ ऐसा ही होगा, जरूरी बातें, कुछ हंसी वाली बातें, कुछ बॉलीवुड की बातें, कुछ सिंगापुर की बातें और बीच बीच में वो जो कि आने बेहद जरूरी है, हमारे प्यारे गाने जो शायद आपके दिन का बेस्ट पार्ट होते हैं, राइट? तो अगले कुछ घंटे मेरे साथ रहिए, लेट्स मेक द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई अ गुड वन। मस्ती हैंग आउट, आई बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: सिंगापुर, एक सिंपल सा सवाल। घर में जब बिजली का बिल आता है तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? एसी कौन चला के रख रहा था पूरी रात है? या फिर ऐसे कोई कहता है कि लाइट्स बंद करना इतना मुश्किल था क्या? या फिर मैंने बंद तो करा था, किसने ऑन किया? ऐसे बहुत से ताने सुनने मिल जाते हैं ना, ग्लोबल लेवल पे ऐसा ही होता है। इस बार शायद ये डिस्कशन और ये ताने थोड़े और बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो है जो बढ़ने वाला है, राइट? 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सिंगापुर में बिजली बिल टैरिफ जो है वो बढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल टैरिफ्स, दे आर गोइंग टू इंक्रीज। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की बात करें, 17% इंक्रीज हो जाएगा वो। यानी कि जो भी आपका एवरेज बिल था उसमें आप $17 और जोड़ लीजिए, सिंगापुर डॉलर्स, तो आपके बिजली के बिल में एवरेज 17 सिंगापुर डॉलर्स का इजाफा हो जाएगा। ये एक्सपेंस आपके पॉकेट पे थोड़ा भारी तो जरूर पड़ने वाला है। साथ में बता देती हूँ कि टाउन गैस टैरिफ जो है वो भी 7.1% तक इंक्रीज अनाउंस हुई है उसमें। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंक्रीज इसलिए नहीं है कि हमारे पास बिजली की कुछ कमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या ना, सिंगापुर अपनी लगभग 95% जो बिजली है वो इंपोर्टेड नेचुरल गैस से जनरेट करता है। एंड ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस जो वो बढ़े, तो उनका जो इम्पैक्ट है हमारे बिजली के बिल्स में दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे इतना लेट, सी व्हाट हैपेंस, टैरिफ जो है वो क्वार्टरली कैलकुलेट होते हैं ना यहाँ पे, इसीलिए ग्लोबल इवेंट्स का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे थोड़ा डीले आता है। मतलब लेसन इज वेरी सिंपल, कभी कभी दुनिया के दूसरे कोने में होने वाली जो खबर है सीधा हमारे घर के बिजली के बिल तक पहुंच जाती है और थोड़ा डीले मोड में पर असर जरूर दिखाती है। अब देखते हैं आने वाला मौसम कैसी मेहरबानियां दिखाता है आते महीने में, क्योंकि जो तहलका गर्मी ने मचा रखा है बाकी दुनिया में, अगर सिंगापुर में मेहरबानी हुई मौसम की तो हो सकता है बिजली के बिल की मार उतनी ना पड़े। बाकी देखिए, मौसम के बारे में मैं सिंगापुर के कुछ नहीं कह सकती।
2: क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर।
1: कहीं बात का बुरा मान जाए और तहलका मचा दे तो भैया माफ करना।

0: They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया'स फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.
5: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय.
6: No talking allowed. सिर्फ म्यूजिक बोलेगा. Back to back गाने only on Musti Music Cafe.
7: Radio Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आजकल एक प्रॉब्लम कॉमन है सबके साथ, भूख तो लगती है लेकिन समझ में नहीं आता कि खाएं क्या। कभी चिप्स खा लेंगे, कभी बिस्किट्स खा लेंगे और बाद में गिल्ट भी फ्री में साथ में लेके आती हूँ, ओ गॉड वजन बढ़ गया, ओ माई गॉड पेट में, ओ माई गॉड दिस दैट दैट। अगर आप स्मार्ट स्नैकिंग की तरफ स्विच करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो मैं लेके आई हूँ, जी जी, अरे जी जी मार्ट, जी जी जी मार्ट जरूर विजिट करिए। आपको पता है यहाँ पे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रेंज है क्रिशिवल नट्स की, दे आर फार्म फ्रेश, 100% ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबली पैक्ड है। क्रंची आलमंड्स, प्रीमियम कैश्यूज, रोस्टेड पिस्टैचियोज, हेजल नट्स, मैकेडेमिया नट्स, ये मुझे बड़े पसंद है, पम्पकिन सीड्स, यानी टेस्ट भी है और न्यूट्रिशन भी। वैसे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि नट्स जो है वो हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं। ये आपको लॉन्गर टाइम तक फुल फील कराते हैं आपके टमी को, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और बिजी लाइफस्टाइल में एक परफेक्ट एनर्जी स्नैक, ये जो आपकी कमी है ना उसको पूरा करते हैं। अगर इस गर्मी में बॉडी को नेचुरली कूल रखना है, जी जी मार्ट के पास ऑप्शन है, गुलकंद जरूर ट्राई करिए। फ्रेश रोज पेटल से बनता है ये, नेचुरल शुगर से बना हुआ है, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रिजर्व, सिर्फ मीठा नहीं है ये बल्कि बॉडी को कूल रखने में बहुत मदद करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एसिडिटी कम करता है, सहायता करता है उसमें एंड स्ट्रेस से आपको रिलीफ दिलाता है। तो ये जो टैरिफ वैरिफ बढ़ रहे हैं ना, इन सब से आपको राहत दिलाने में ये सब चीजें आपकी काफी मदद करने वाली हैं। तो GTMart online.com पे जाइए, मतलब www.gtmart.com पे जाइए और

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: कभी कभी ना फोन पे एक मैसेज आता है और उसको देखते ही मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, सैलरी क्रेडिटेड। और कभी कभी बिना सैलरी आए भी एक अच्छी फाइनेंशियल न्यूज आती है तो उसका मजा अलग होता है। जी, सैलरी के अलावा अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। हो सकती है क्या है खुशी की बात, मैं बताती हूँ। अगर आप सिंगापुर में HDB हाउस होल्ड में रहते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। जुलाई में 1 मिलियन से ज्यादा सिंगापुर HDB हाउस होल्ड को सरकार की तरफ से यू सेव और सर्विस

एंड कंजर्वेंसी चार्जेस यानी कि एस एंड सी सी रिबेट्स मिलने वाले हैं। जी थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो वो ये है कि यू सेव रिबेट आपकी यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली पानी एक्सपेंसेस को ऑफसेट करने में काफी हेल्प करता है, और एस एंड सी सी रिबेट जो है एस्टेट मेंटेनेंस चार्जेस को जो बर्डन है वो कम करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सपोर्ट अश्योरेंस पैकेज और जीएसटी वाउचर स्कीम का हिस्सा है, जिसका पर्पज है राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के बीच में हाउस होल्ड का जो फाइनेंशियल आपको स्ट्रेस है उससे थोड़ा आपको रिलीफ दिलाना। एलिजिबल हाउस होल्ड को साल भर में मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में ये जो रिबेट है वो मिलते हैं। वाओ, मतलब हर गुड न्यूज ना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, चाहे वो खुशी की हो चाहे पैसे की हो। वाओ, कुछ गुड न्यूज ना आपके मंथली बिल्स को हल्का भी कर देती है। हर तरह की गुड न्यूज होती है। ऑनेस्टली आज के जमाने में सेविंग अर्निंग जितनी ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है इट्स

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हे, शो के दूसरे आर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड आर में अगर हम इमरान हाशमी का नाम ना ले तो मुझे लगता है बड़ा अधूरा अधूरा लगेगा, और अगर बॉलीवुड आर में इमरान हाशमी का नाम लिया है तो दो चीजें गारंटीड होती हैं, एक हाय दिल टूटेगा यस, और दूसरा प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी। ओ माय गॉश, आफ्टर 19 लॉन्ग इयर्स वो फिल्म वापस आ रही है जिसने बॉक्स ऑफिस से ज्यादा लोगों के दिलों को जीता था, आवारापन 2। इसका टीजर फाइनली आउट हो चुका है। ऑनेस्टली टीजर देखते सबसे पहले जो चीज मुझे हिट की ना, वो पता है क्या है? वो है नॉस्टैल्जिया। मैं वापस चली गई 19 साल पहले, बैकग्राउंड में वो आइकॉनिक तो फिर आ मैंने करी एंड स्क्रीन पर फिर से शिवम पंडित, इतना ही काफी था फैंस को इमोशनल करने के लिए। यू नो व्हाट, जब आवारापन 2007 में रिलीज हुई थी ना, तब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल कुछ भी बड़ा धमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे फिल्म बिकेम अ कल्ट क्लासिक बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, द एक्टिंग, एवरीथिंग। इमरान हाशमी आज भी उनके करियर की ना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज इस फिल्म के लिए उनकी नहीं जाती है। तो आवारापन का नाम टॉप लिस्ट में उधर आए चाहे ना आए, इमरान हाशमी के फैंस की लाइफ में तो आता ही है। गाने आउट ऑफ द वर्ल्ड भाई साहब, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता एंड महिया आज भी चार्ट बस्टर्स, अगर कहीं तो गलत नहीं होगा। 2000 की हार्ट ब्रेक प्लेलिस्ट जो है ना, परमानेंट मेंबर्स हैं ये गाने उसके, उठा के किसी से भी पूछ लीजिए। इस बार इमरान के साथ कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, जैसे कि दिशा पाटनी, शबाना आजमी जो कि बैड वुमन नजर आने वाली है। टीजर का एक डायलॉग है,

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। रणवीर सिंह ना, उनको सिर्फ अगर आप एनर्जी का पावर हाउस समझते हैं तो आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है। मतलब सॉफ्टवेयर आपका अपडेट हुआ नहीं बहुत वक्त से, वो अटक गया उधर धुरंधर पे जाकर के। बैंड बाजा बारात का चार्मिंग बिट्टू शर्मा, कैसे बोल सकते हैं उसको, देन बाजीराव मस्तानी का फियरलेस वॉरियर, पद्मावत का टेरिफाइंग खिलजी, या गली बॉय का यो मुराद। क्या है ना, हर फिल्म में रणवीर ने खुद को इतना ट्रांसफॉर्म किया है कि कभी कभी लगता है कि ये वही था जिसको मैं देखा था, क्या मुझे पता है पर मैं धुरंधर का नाम क्यों लूं, अभी तो देखी हुई है। तो एक और कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर जॉनर में ना वो एंटर करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रणवीर सितंबर 2026 से अपनी बहुत ही एम्बिशियस फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, प्रलय। यस, मेजर स्केड्यूल ऑस्ट्रेलिया में प्लान किया गया है और ये बॉलीवुड का एक बहुत ही रेयर, एक माना जाए तो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स जॉनर वाली फिल्म है ये। सो हंसल मेहता इसको डायरेक्ट करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि रणवीर ने ऑलरेडी इस रोल की प्रिपरेशंस शुरू कर दी हैं। भाई देखो, रणवीर के लिए तो हमेशा से कहा जाता है कि वो अपने रोल में इतना घुस जाते हैं उसकी तैयारियां करने वरने के लिए कि मतलब कई बार तो बेचारे दुनिया से कट जाते हैं। पर मैं जानना चाहती हूँ कि ज़ॉम्बीज से लड़ना चाहते हैं, ज़ॉम्बी बनना चाहते हैं, फॉर व्हाटएवर, मतलब वो क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं। रणवीर कभी अपने ये थोड़े सीक्रेट्स बताओ ना यार, मेरे को क्या बॉलीवुड में ट्राई मारने का है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत सीक्रेट जानने का है। वेल, जो भी हो, इतना पता है कि ये इंसान जो भी करेगा धुरंधर प्रतिभा के साथ करेगा। रणवीर जो भी करते हैं टॉप क्लास करते हैं। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ इस मूवी का और इसमें रणवीर को देखने का। I'll be back in musical break about, stay tuned.

आधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। Have you ever noticed कि कुछ लोग सिर्फ खबरें सुनते नहीं, मतलब न्यूज सुनते नहीं है, उसका आंसर ना तुरंत ऐसे निकल जाता है उनके मुंह से। हेडलाइंस आती हैं तो उनका दिमाग एकदम दौड़ने लग जाता है, चाचा चौधरी से भी तेज, अगले स्टेप पर वो पहले पहुंच जाते हैं। करंट अफेयर्स देख लो, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, रैंडम ट्रिविया, कुछ भी, उनके पास हमेशा एक बहुत ही स्मार्ट सा रिस्पॉन्स तैयार होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं या आसपास आपके कोई है तो आप उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि फैक्ट्स का फुल स्टॉक अगर आप रखते हो, वक्त आ चुका है उस टैलेंट को स्पॉटलाइट में लेकर आने का। मस्ती मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज, सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो जहां पे नॉलेज विंस। अब देखो, ये कोई ऑर्डिनरी क्विज नहीं है, इट्स अ प्रॉपर गेम शो एक्सपीरियंस जहां पे आपको हॉट सीट, कैमरा, लाइट, एक्शन सब मिलेगा। जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। हर राउंड में आपकी नॉलेज ना वो टेस्ट होगी और आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। फॉर ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने, जैसे कि आपको LION टेक्स्ट करना है, ये लिख करके 9151893 पर। हमारी टीम आपको क्वालिफिकेशन राउंड के लिए दो सवाल भेजेगी जब आप ये लाइन लिख करके हमको भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर। अगर आप उसके बाद सारे प्रोसीजर्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी टीम आपको आगे के लिए गाइड करती जाएगी। पर हमारी टीम तक पहुंचने के लिए आपको फिलहाल LION लिखना है और भेजना है 9151893 पर। समझे? जल्दी करो।

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
0: एक्साइटेड
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा
4: हाँ जी जी
3: आधा केजी मसूर दाल
4: जी जी
3: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
4: जी जी
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो
4: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर
3: क्या जी
4: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट online.com ग्रोसरी एड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप
3: वाजी क्या बात जी
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: मेरे यार की शादी नहीं है, शादी तो टेलर स्विफ्ट हो रही है। आजकल शादी में सबसे महंगा क्या है? वेन्यू? नहीं। डिजाइनर आउटफिट? नहीं। प्राइवेसी। और जब बात होती है टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस की, तो प्राइवेसी का बजट ना ब्लॉकबस्टर है। मतलब पूरी पिक्चर इज इक्वल टू शादी की प्राइवेसी। तो पता ये लगा है कि ये जो कपल है अपनी र्यूमर्ड वेडिंग का इतना सीक्रेट रखने का उसको प्लान बना चुका है, इतना ज्यादा सीक्रेट रखना चाहते हैं कि गेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशंस के साथ में NDAs, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स भी भेज दिए गए। यानी कि शादी अटेंड करनी है तो पहले प्रॉमिस करो जो अंदर देखा वो इंस्टाग्राम स्टोरी पर नहीं जाएगा। यार ये सही है यार, मतलब लोग पूरी पूरी पिक्चर स्टोरी पर डाल देते हैं मूवी हॉल से, ये गलत है ना यार। उनकी लाइफ में तो उनकी शादी पिक्चर ही है, मतलब पिक्चर जैसी रोमांटिक शादी है ना। हाँ अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इवेंट में 1100 यानी 1100 से ज्यादा गेस्ट हो सकते हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के होने वाले हैं। मुझे लगा और कम होंगे। सच बताओ आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा ना डिफिकल्ट होता है रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना। एक तरफ हम लोग ना डिनर से पहले फोटो पोस्ट कर देते हैं और एक तरफ कुछ लोग शादी भी NDA के साथ कर रहे हैं, मतलब नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स के साथ। यार शादी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के साथ चल रही है। सेलिब्रिटी लाइफ है ना या नॉर्मल लाइफ, आजकल सबके साथ कोई ना कोई क्लॉज चल ही रहा है। कभी कभी सबसे खूबसूरत मेमोरीज वो होती हैं जो कैमरा रोल में नहीं दिखाई

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीबॉडी, शो के लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी ना लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर जो है वो आपको गूगल पे नहीं मिलता है, राइट? चलते चलते ऐसे पैर के सामने आ भी जाता है कई बार, हंट नहीं करना पड़ता। यूके में एक 11 साल का लड़का फैमिली के साथ बीच पे चल रहा था, वॉक कर रहा था एवं कैजुअली। उसे लगा कि उसे एक अजीब सा पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने चेक किया, जब उसने दिखाया निकाला उसको, तो पता लगा कि वो 1.8 मिलियन साल पुराना एलिफेंट टूथ था। जी, यह हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और नहीं था, हाथी का असली दांत था भाई। और ये ना कोई ऑर्डिनरी एलिफेंट भी नहीं था, अनैंकस समथिंग समथिंग बड़ा एक्सटिंक्ट एलिफेंट जो है उसके रिलेटिव का अपर मोलर था ये, जो कि मॉडर्न ह्यूमन से भी लाखों साल पहले धरती पर घूमा करते थे। सो एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोस्टल इरोजन की वजह से ये फॉसिल बीच तक आ गया। यू नो, सबसे फिल्मी कोइंसिडेंस पता है क्या है? वो ये है कि इस डिस्कवरी से पहले 10 मिनट पहले बच्चे ने कहा था अपनी मम्मी से, मम्मी आपको पता है मुझे एलिफेंट्स बहुत पसंद है। और सच में 10 मिनट के बाद हिस्ट्री लिटरली उसके पैरों के सामने थी, वो भी ट्रेजर वाली हिस्ट्री। इसको कहते हैं कभी कभी जिंदगी में ना सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, नजरें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और नजरिया भी। बाकी मंजिल तो देखिए आपको कहाँ पहुँचा देती है ना।
2: माशाल्लाह तारीफ है, माशाल्लाह बड़ी कमबख्त है तू, अभी भी मस्त है तू।
1: क्या पता अगली एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवरी जो है वो किसी म्यूजियम में नहीं, ऐसे राह चलते किसी अगली वॉक पे हो जाए। इसीलिए वॉक पे जरूर जाना चाहिए।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजी मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अडल्टिंग ना ऑफिशियली लेवल अप हो चुकी है। क्यों? पहले मम्मी क्या कहती थी, पैसा संभाल के खर्च करो, अब टेक्नोलॉजी कह रही है नहीं, मतलब नहीं माने, ओके ऐसे। हाँ, वो कहावत हमारे बचपन में भी हुआ करती थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, समझाना पड़ेगा क्या? Amazon पे एक बहुत ही स्मार्ट ब्रेसलेट वायरल हो रहा है जो आपको ओवर स्पेंडिंग से रोकने के लिए ऐसे शॉक देता है। सिस्टम बहुत सिंपल है, ऐप में अपना बजट आप सेट कर लो और अगर उसके बाद भी आप शॉपिंग चालू रख रहे हो तो ये ब्रेसलेट आपको झटके देगा, असली वाले झटके, बस बस ऐसे। और आप नहीं मानोगे तो समझे, इसके पीछे ना साइकोलॉजी भी काफी इंटरेस्टिंग है। आइडिया ये है कि दिमाग अननेसेसरी शॉपिंग को ना एक अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ एसोसिएट करे ताकि धीरे धीरे ये जो इम्पल्सिव स्पेंडिंग होती है वो कम हो जाए। पर मेरा एक सवाल है, अगर सेल में 90% ऑफ हो तो शॉक ज्यादा पेनफुल होगा या ऐड टू कार्ट है, माने हम क्या करें? ऐड टू कार्ट ना कर पाने का शौक झेले या घड़ी का दर्द, इसे आप बताइए। आपको बजट कंट्रोल करने के लिए आपके लिए आपका विल पावर काफी है या अमेज़न का ये आउट ऑफ बजट घड़ी लेने जाएंगे आप? मुझे नहीं पता कितने की, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ।
2: करंट लगा रेंट लगा रेंट लगा रे,
3: मना चा तो सबको करंट लगा रे,
4: रेंट लगा रेंट लगा रेंट लगा रे, मना चा तो सबको करंट लगा रे।
1: इस बजट को कंट्रोल करने के लिए भी तो एक घड़ी चाहिए भैया, बहुत हो गया है गैजेट पे स्पेंड, अब बस करो, फिर कौन रोकेगा?
5: एवरीबॉडी रेडी?
6: रेडी रेडी,
5: बीट्स रेडी है, शहनाई, माइक टेस्टिंग 1 2 1 2 3 4।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: द न्यूएस्ट चैप्टर इन द YRF स्पाई यूनिवर्स।
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
1: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
5: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta hai.
1: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: Yeah.
1: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा. Only on Masti Hangout with RJ Mugdha. Radio Masti 24/7 Live.
2: Radio Masti 24/7 Live.
3: एक उम्र के बाद लोग क्या कहते हैं?
4: अरे अब हमसे नहीं होगा,
3: है ना? लेकिन शायद प्रॉब्लम एज होती नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ दिमाग में होती है. और वो इतने कि हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि अब नए एक्सपीरियंसेस का टाइम निकल गया है. पर फिर कुछ ऐसी कहानियां आती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं. ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन ग्रैंडफादर ने 18,000 फीट की हाइट से स्काई डाइविंग किया और इंटरनेट का दिल जीता. वीडियो में लैंडिंग के बाद भी उनकी जो स्माइल है ना, उसको देख करके एक बात तो समझ में आ गई, एडवेंचर का कोई रिटायरमेंट एज नहीं होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है. ऑनेस्टली हम में से ना कितने लोग होंगे जो एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करने से पहले 10 बार सोचते होंगे, रिव्यूज पढ़ते, कुछ भी नया करने से पहले उसके बारे में ठोक बजा के पता करते हैं. यहाँ पे ग्रैंडफादर सीधा हवा में छलांग लगाने को तैयार हो गए. इसीलिए कभी कभी ना लाइफ का बेस्ट मोटिवेशन जो है वो किसी कोटेशन के रूप में किसी किताब में नहीं मिलता है आपको, वो किसी इंसान की स्माइल में मिल जाता है जो दुनिया को याद दिलाता है कि जिंदगी की एक्साइटमेंट ना बर्थडे कैंडल से नहीं गिनी जाती है, वो हिम्मत से गिनी जाती है. So are you ready 18,000 फीट ऊंचाई पर जाने के लिए? ओह

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: लिसन, मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: नो
0: यार, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: आई डोंट नो।
0: देख, अकेली लड़की, अनजान शहर,
2: कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: एंड विद दिस, आज का मस्ती हैंग आउट यहीं पे रैप अप करते हैं। उम्मीद है कि कॉन्वर्सेशंस जो हमारी हुई है आपके फेस पे स्माइल भी लेकर आई होंगी, क्योंकि कभी कभी कुछ नया सीखने के लिए ना किसी की जरूरत होती है, और कभी कभी बस थोड़ी देर के लिए आपका बिजी रूटीन से आपको ब्रेक मिल जाए, इनफ होता है। जाते जाते एक छोटी सी बात, रेडियो पर हम काफी कुछ सुनते हैं, पर रेडियो सिर्फ गाने बजाने का नाम नहीं होता है, रेडियो एक कनेक्शन होता है, एक आवाज जो किसी का सफर आसान बना देती है, किसी की तन्हा शाम को बिना दोस्त के भी दोस्तों से भरी बना देती है, और कभी कभी किसी की जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल देती है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी आवाज लोगों तक

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहाँ काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Akshay Kumar. Let's take a selfie now.
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल
2: गेम जय सिंगापुर सारू जय
3: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
5: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी।
6: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
7: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर, वी ब्रिंग देम बैक। Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.

लटीना चिकनी चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
6: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, दैट टू विद अ हाइब्रिड मॉडल फॉर योर कन्वीनियंस। 12 आवर्स ट्रेनिंग पर लेवल, फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस सिलेबस ऑफर्ड फॉर 14 ईयर्स ओल्ड एंड अबव। Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: Your Masti Music Cafe is

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: देखो तो हम पास लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे
2: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
3: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
4: तुमको लेकर
3: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
5: मुझे जान पहले चलो,
3: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
5: रात अकेले है।
6: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का।
7: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
3: टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. आपकी नॉलेज आपकी जीत.
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musty Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musty 24/7.
2: मेरे करण अर्जुन आएंगे.
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे. पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: इतना सही लगता है ना ये गाना मुझे, मतलब एक अजीब सा ही ग्रूविंग एलिमेंट है पूरे के पूरे गाने में. हेलो हाय वेलकम नमस्ते गुड इवनिंग व्हाट्सअप क्या हाल चाल क्या चल रहा है बताएं बताएं भाई. वेंसडे आ गया, क्या बात है, स्माइल तो देखें है ना. आजकल तो वेंसडे शाम को ही स्माइल आने लगती है क्योंकि हमने थर्सडे को तो मतलब मानना ही छोड़ दिया है कि यार थर्सडे तो ऐसे निकल जाएगा. वीकेंड इज ऑलरेडी हियर व्हिच इज अ वेरी नाइस फीलिंग. दो 5 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 5 मिनट. मैं ऑफकोर्स शाम के टाइम में मिडवीक ब्लूज भंगाने का जो जिम्मा है वो आपकी अंशरा ने यहाँ पर ले रखा है और चलते चलते यूं ही यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम सीधा 8 बजे यहाँ पर रुकेंगे. बट ये जो 3 घंटे की हमारी शाम की डेट है, दैट इज सो नाइस राइट. एंड शाम इज दैट टाइम व्हेन यू रियली नीड दैट किक है ना. देखो दिन की शुरुआत में तो जरूरत होती होती है, फिर आप एक रूटीन में ढल जाते हो, फिर आप अपना काम करने लगते हो, फिर शाम का वो एक थोड़ा सा एक छोटा सा टाइम फ्रेम आता है जब आपको लगता है कि यार जैसे ही आप वहां जाने लगते हो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि नहीं ना ना ना मुन्ना ना हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे, आपको इधर उधर की सारी खबरें देंगे, बातें बताएंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी ऑल हैव अ रियली रियली गुड टाइम. सो बस ये जिम्मेदारी निभाने हम आ गए हैं तो हम कुछ कर गुजर जाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन गानों को आने देंगे है ना. चलो भाई शुरू हो चुका है हमारा मिडवीक ब्लूज का सिलसिला, सो गानों को लेकर आगे बढ़ते हैं और मैं आती हूँ वापस विद द खबर ऑफ दिस इवनिंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड इवनिंग.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा?
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है.
0: Time to raise the bar. रम्मा. मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
3: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra. Aapki knowledge, aapki jeet.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
5: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ. यहाँ पर बिल्कुल जुड़ चुकी है, हमारी इवनिंग शुरू हो चुकी है. बट उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मिड वीक ब्लूज में हो मैं सतवारो. लॉन्ग टाइम नो सी बडी, लॉन्ग टाइम नो सी भाई. बहुत बहुत टाइम के बाद कभी कभी क्या होता है कि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, लाइक एवरीबडी काइंड ऑफ गेट्स बिजी. ठीक है, कोई कहीं चला गया, कुछ हो गया, एंड देन जब वो लौटते हैं ना, तो आपको क्या बताऊं कि मुझे कितनी खुशी होती है. इतनी खुशी जितनी आपको मेरी आवाज से जो है मेरे इमोशंस का अंदाजा लगा होगा. सो वेलकम मिस्टर द्वारो, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. बट उसी के साथ यहाँ पर आज की बेहद ताजा खबर. भाई जिंदगी में ऐसा काम करना ही क्यों, ठीक है, जिसका आपको कहीं ना कहीं अंदाजा हो कि यार इसमें तो पंगे हो सकते हैं. अब क्या है ना, सोशल मीडिया के चक्कर में everybody wants to become viral, and it has also kind of given platform and voice to a lot of other people ki jo jokes hum log apne doston yaaron ke sath aise hansi mein uda dete. See, aap hi manoge, theek hai, there are times jab hum log apne close friends ke beech mein jo baithe hue hote hain, we say things which we might not have said on a public platform, because we know that there is a line and it is not supposed to be like that. But yahan par baat kuch alag si hi ho gayi. So now you know about this latest जो केस चल रहा है इंडिया में, जहां पे पुणे का ये केस है. बंदी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है मिलकर केतन अग्रवाल जो है उनको धक्का दे देती है इस लोगर फोर्ट से. सो दिस इज द होल केस. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव पुट इन अ लॉट ऑफ देयर ओपिनियंस, या वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये सोशल मीडिया पे डाला हुआ है. दिस गर्ल कॉल्ड डॉक्टर मुस्कान सोनी, ओके, इन्होंने काफी कुछ कह दिया, इन द सेंस कि मजाक उड़ा दिया काफी इस बात का. शी इज अ डेंटल, यू नो, शी इज अ डेंटिस्ट बेसिकली. सो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो है केतन अग्रवाल की डेथ को लेकर, शी लाफ्ड एंड शी सेड अ लॉट ऑफ इनअप्रोप्रिएट थिंग्स विच शी शुड नॉट हैव सेड, स्पेशली व्हेन समबडी हैज अ लाइफ इज लॉस्ट ओवर हियर एंड द सिचुएशन इज नॉट हिलेरियस, इट इज रियली रियली सैड. सो वेल, अब भुगत रही है उसका अंजाम, बिकॉज पीपल आर वॉचिंग यू. Okay, people are watching you. It is not funny anymore. All India Dental Students and Surgeons Association jo hai unhone suspend kar diya hai Dr. Muskan for 5 years with immediate effect, and that too on just one of this Instagram story. Log kehte hain hamari awaaz duniya tak nahi pahunch rahi, aapki pahunch rahi hai. So I don't understand why don't people make any sense. क्या क्या मिल जाएगा ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो है करके. सो वेल, उनको बिल्कुल कहा गया है एंड हर जगह पे उनके आर्टिकल्स अब आ रहे हैं कि उनके इनअप्रोप्रिएट, ऑफेंसिव एंड डिसरेस्पेक्टफुल इसके वजह से, जबकि शी हैज पोस्टेड एन अपोलॉजी वीडियो एज वेल, बट उसका अभी कोई आई डोंट थिंक सो ज्यादा फायदा होने वाला है. सो वेल, तभी मैं कहती हूँ सोच समझ के, हु एवर इज यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रियली रियली हर रोज, हर दिन, हर रात आपको शौक है, वेरी गुड, बट देन या वी हैव टू बी सेंसिबल ह्यूमन बींग्स. ये चेक मार्क बहुत जरूरी है, सीरियसली. गुड इवनिंग.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर जर्नी हमारी अब सीधा ट्रैफिक का अपडेट लेगी। 5:30 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, आपको बताया जाए आइए कि सिंगापुर की सड़कों का हाल चाल क्या कहता है। हैवी ट्रैफिक आपको इस वक्त मिलेगा ऑन केपीई टनल टुवर्ड्स टी

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: मैं कह रही हूँ रुखसार, मैं कह रही हूँ, मैं तो कब से कह रही हूँ कि जब जब तुम किसी चीज को वक्त दोगे, अपने आप चीजें आपके सामने बिल्कुल हाजिर होती रहेगी. याद आया, कौन कौन किस हीरोइन ने ये ऐसे कहा था, मैं तो कह रही थी रुखसार, मैं तो कह रही थी. आपको पता है, यू नो इट, आपको सुना सुना सा लग रहा है. इट विल जस्ट टेक फ्यू मिनट्स टू रजिस्टर एंड एक्सेप्ट, एंड देन यू विल बी एबल टू टेल मी दैट विच हीरोइन सेड दैट इन विच मूवी शी सेड दैट. एंड या वी आर दैट गुड. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मिडवीक ब्लूज यहाँ पर चल रहा है. हाँ जी, तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये कुछ महीनों हो गए या साल भर हो गए इस बात को. तो आमिर खान साहब जो है, इनके एक भाई साहब है फैजल खान साहब, ठीक है. ये वही है, लेट मी टेक यू बैक इवन मोर पीछे. मेला दिलों का आता है. ओह माय गॉड, व्हाट, मतलब उस मूवी ने आई थिंक ट्विंकल खन्ना की आंखें खोल दी थी कि भाई ये एक्टिंग ना हो पाएगी. सो बल फैजल खान भी उसी मूवी में नजर आए थे, उसके बाद फिर या नजर नहीं आए. सो फैजल खान जो है, ये पब्लिक में गए, इन्होंने एक्सप्लोसिव एलिगेशंस लगाए आमिर खान और अपनी फैमिली के ऊपर, दैट इनकी फैमिली ने इनको यू नो कन्फाइन करके रखा घर पे. दे पोर्ट्रेट हिम एज स्किज़ोफ्रेनिक टू कवर अप फैमिली डिस्प्यूट्स. ही आल्सो क्लेम्ड कि आमिर खान जो है, उन्होंने दिया इनको अनवांटेड मेडिकेशन एंड दे कंट्रोल्ड हिज लाइफ. आमिर खान और उनकी फैमिली जो है, दे स्ट्रॉन्गली डिनाइड दीज क्लेम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये तो हो गया, फैमिली ने स्टेटमेंट वगैरह दिया कि भाई हमें बहुत बुरा लग रहा है, वी आर इन डीप डिस्ट्रेस एंड क्लैरिफाइंग ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग हिज वेल बींग वर टेकन एंड वर मेड कलेक्टिवली विद मेडिकल प्रोफेशनल्स भी इन्वॉल्व थे. इट वॉज आउट ऑफ लव एंड कंपैशन, जो कि कोई भी अपने बच्चे के लिए करेगा, अपने घर वालों के लिए करेगा, ठीक है. फिर भाई ऐसा है कि बात आई गई हो गई, ठीक है, वो कुछ हुआ नहीं इसके बारे में ज्यादा कि, और इसको यू नो हवा नहीं लगी. नाउ कट टू टुडे, हु कम्स बैक विद एन अपोलॉजी? आमिर खान के भाई फैजल खान, जिन्होंने सारे ये जितनी बातें कही थी कि इनका ऐसे कर दिया था वैसे, ही इज बैक विद एन अपोलॉजी एंड दैट टू बिकॉज आमिर खान इज गोइंग टू गेट मैरिड टू गौरी स्प्रैथ 5 जुलाई को, जस्ट उसके पहले. यू टर्न इस ड्रामा ने लिया है एंड फैजल खान जो है इशूड अ पब्लिक अपोलॉजी टू आमिर खान, अपनी मम्मी एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, और कहा कि मैं बहुत ही माफी चाहता हूँ. आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम एंड उस वक्त गुस्से में मैंने न जाने क्या, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोला था तुमने ये सारी चीजें, बट एनीवेज तो मैंने बोल दिया था एंड एवरीथिंग. एंड देन ही क्रेडिटेड दैट द कुरान जो है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए मैं इस किताब को जो है बिल्कुल सारा क्रेडिट देना चाहता हूँ. एंड ही एडमिटेड दैट एयरिंग दैट प्राइवेट डिस्प्यूट्स इन पब्लिक वाज अ मिस्टेक एंड स्टेटेड दैट फैमिली हार्मनी इज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम देन पास्ट ग्रीवेंसेस. ओके, सी आई मीन, मैंने कहा ना रुखसार टाइम दो, रुखसार सब कुछ सामने आ जाएगा, अपने आप सामने आ जाएगा. अब नाउ वी स्टिल डोंट नो दैट वेदर द सिचुएशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रू और नॉट, बट देन इट इज वॉट इट इज. तो कहानी फिलहाल दोस्तों यहीं तक पहुंची हुई है ना. हमने क्या करना है, हमने बटरफ्लाई बन के एक कहानी से दूसरे पे जाना है, पता सब कुछ होना चाहिए. नहीं, बटरफ्लाई सॉन्ग कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड इवनिंग.
2: लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.
0: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: मेरा एक तो सवाल है, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंदर आपके साथ यहाँ पर, और ऑफ कोर्स चल रहा है मिडवीक ब्लूज। पहले तो जो सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था कि मैं कह रही हूँ रुखसार, मैं कह रही हूँ दैट वाज खजोल। यस, जिन्होंने मुझे आंसर्स दिए हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम वी कैन नॉट गेट रॉन्ग ओवर हियर। ओके, खजोल, कभी खुशी कभी गम, दैट्स राइट। अब एक और सवाल पे आता है कि ये क्या करना चाहिए कि आप कोई चीज, ये ट्रेंड शुरू कौन कर रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सो वेल, ऐसी ऐसी चीजें ट्रेंड बनती हुई जा रही है जो एक टाइम पे इसको इट्स सो डिफरेंट, इट्स सो यूनिक एंड इट्स सो वियर्ड एट द सेम टाइम दैट आई डोंट इवन नो हाउ टू पुट दिस अक्रॉस। राइट भाई, आजकल लड़कियां जो है, देयर इज अ फ्रेकल्स ट्रेंड गोइंग ऑन। Can you believe that, ladies and gentlemen? Yes, I am not kidding. Freckles, yani ki wo jo chhoti chhoti chhoti chhoti jo aapki cheeks ke upar hote hai na, ye ab makeup product, yani ki ek pen, freckle pen aata hai, by God ki kasam, which costs somewhere around 8 to 9, in fact there are more expensive ones as well, main to ye sasta wala bata rahi hu aapko, usse ye freckles bana rahi hai, because according to the trend, if you have those, then you are like young in age. आपको younger दिखना है, youthful देखना है, तो you need to have those freckles, and so they are making it on their clean and clear skin. I mean, I cannot get over this. I have had freckles for the longest time. ठीक है, एंड मुझे लगता था अभी तक, अच्छा सिलेबस इतना आगे भी बढ़ गया है, ये कभी कभी कैचअप करने में भी हम लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो हमारे सिलेबस में तो हमने पढ़ा था कि भाई क्लीन एंड क्लियर स्किन होनी चाहिए आपको, और आजकल तो मैं तो अलग ही लेवल पे चल रही हूँ कि अंदर से सब सही होना चाहिए, बाहर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। बट इसको अभी छोड़ो, साइड में रखते हैं। डोंट, आई स्टिल हैव फ्रेकल्स, आई नेवर न्यू इट वॉज इन ट्रेंड। These girls and boys are, and makeup influencers are making freckles on their clean faces. कोई बताएगा मुझे कि क्या चल रहा है ये मार्केट में, what is happening, what is wrong with these people? I just cannot get it. मेरे को मतलब ऐसा शॉक लगा हुआ है ना कि मैं, yeah, good evening, yeah, this is the world we are living in. But then it is a trend, it's a thing nowadays. If you didn't know, just in case, yeah.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा

छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: हेलो हेलो एंड वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ यहाँ पर और चल रहा है मिडवीक ब्लूज. भाई मूड चेंज करने की बात यहाँ पर हुई है तो बस बढ़ते हैं इसी बात को करते हुए आगे. थोड़ी देर पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट द फ्रेकल्स ट्रेंड एंड आई एम स्टिल नॉट ओवर इट. मतलब ऐसी चीज जो हमारे पास सदियों से रख रखी है तो हमने उसका यूज क्यों नहीं किया. बट एनी वेज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो है वी मेक दोज चॉइसेस बिकॉज वी थिंक एट दैट point of time that is the right thing to do. Sanjeev Kapoor ji, इनका नाम तो आपने सुनना ही होगा. I mean, हमसे भी ज्यादा हमारी मम्मियों ने ये नाम सुन रखा है because there was a point of time when all our moms were like, अगर कुछ उनको recipe समझ में आ रही है तो वो संजीव कपूर जी जो है जब वो टीवी पे आते थे वो कुछ कुछ बना के दिखाते थे एंड आवर मॉम्स यूज्ड टू काइंड ऑफ विप अप समथिंग आफ्टर सीइंग हिज रेसिपीज एंड एवरीथिंग. सो बट भाई उनका एक इंटरव्यू मैं देख रही थी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक कुकिंग रियलिटी शो जो है मास्टर शेफ वाला, सो उसके सीजन वन के लिए जब संजीव कपूर जी के पास गया था ये एक कि भाई सर ऑफ कोर्स आपको तो करना ही करना है बट वी हैव दिस सेलिब्रिटी यू नो शेफ आल्सो विद अस, उनकी वजह से तो डेफिनेटली जो है बहुत ही शानदार हो जाएगा, आप दोनों आ जाओगे. एंड दैट वाज नन अदर देन अक्षय कुमार. सो अक्षय कुमार का क्विक बैकग्राउंड, वी ऑल नो दैट ही हैज बीन अ शेफ, ही नोज हाउ टू कुक. सो वो बैकग्राउंड लेते हुए उन्होंने अक्षय कुमार को भी रोप इन किया रखा था. सो संजीव कपूर जी ने बहुत सिंपल सी बात कही कि मैं जरूर आई विल बी ऑन बोर्ड बट यू मस्ट पे मी मोर देन अक्षय. एंड हाउ मच? ओनली 1 rupee मोर. वट एवर अमाउंट यू आर पेइंग अक्षय, यू जस्ट पे मी 1 rupee मोर देन दैट अमाउंट. सो एंड इट वॉज नॉट अबाउट कोई ईगो क्लैश या नथिंग. ओके देखिए दिस इज भाई आप कुकिंग की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, उसके रियलिटी शो की बात कर रहे हो एंड he's a legend already at that point of time. And उनके सामने अगर कोई ऐसा कह रहा है कि भाई नहीं नहीं अक्षय कुमार को लेगा आपको इतने में से काम चलाना पड़ेगा, so he did not do it that season. But eventually in the third season they had to come to Sanjeev Kapoor, they had to give him that and yeah, then he was on board. कहते हैं ना कि patience kind of sometimes gives you. Lot of times it gives you back what you completely deserve. It's just that aapko intezar karna padta hai. Lekin it doesn't work all the time, my dear friends. Kai sare log jo hai jinke paas bahut sara patience hota hai, unko zyada hi time testing wale moments aa jate hain zindagi mein ki khatam hi nahi hota unka patience. Ki bhai ye to kar raha hai intezar, chalo 2-4 din, chalo 2-4 saal aur isko kara dete hain. I don't know how the universe works, but then it is what it is. Well, good to know that Sanjeev Kapoor ji stood his grounds. Completely with him on this, है ना? अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले ना पिछला घंटा खत्म हुआ एंड रेट्रो सॉन्ग बज के एकदम बज के कट गया. एंड भाई सपना आंटी को थोड़ा सा लगा कि यार मेरा तो मूड अच्छा जस्ट हुआ ही था, घंटा खत्म हो गया. सो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सो वी कैन लिसन टू इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किशोर कुमार, इट्स कॉल्ड रूप तेरा मस्ताना. आई एम श्योर दैट नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन इट इन माई वॉइस, सो लेट मी प्ले दैट.

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: They were not chosen.
4: They were created.
5: Maa ka naam jaan ki tha. Hum ise Sita bulavenge.
6: Alpha.
3: The newest chapter in the YRF spy universe.
7: But is baar Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
3: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
8: Alpha program uska junoon hai. जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
3: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
9: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
10: छह बजकर 19 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मिडवीक ब्लूज यहाँ पर चल रहा है. इनफैक्ट मैं बस यही सोच रही थी कि इधर उधर के कितनी सारी अभी तक मैंने बातें कर दी, बट इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, यू नो व्हाट इज दैट वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरीज वी ऑफ्टन टेक फॉर ग्रांटेड, द फीलिंग ऑफ बीइंग सेफ. नहीं, वॉकिंग होम लेट, टेकिंग द MRT, बच्चों को यू नो स्कूल भेजना, प्लानिंग फॉर टुमारो, एंड ये सारी चीज बिल्कुल रिलीव्ड होके करना, बिकॉज डीप डाउन वी नो दैट देर इज अ सिस्टम प्रोटेक्टिंग अस. व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट? आज है सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस डे. यस, एंड हमारे जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लॉरेंस वोंग जो हैं, उन्होंने भी अलोंग विद अ लॉट ऑफ अदर मिनिस्टर्स एज वेल, दे पे ट्रिब्यूट टू द मेन एंड वुमेन ऑफ द सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस. उन्होंने कहा दैट सिंगापुर्स पीस, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी डिपेंड ऑन अ स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल SAF, सिंगापुर आर्म्ड फोर्स, एंड दैट स्ट्रेंथ हैज बीन बिल्ट ओवर जनरेशंस बाय सर्विस मेन एंड वुमेन who have served with dedication, professionalism and courage. Aur sach mein ye uniform sirf ek dress kahan hoti hai, right? Uske sath aati hai responsibility, sacrifice, kitna sara commitment. Bahut log apne family se door long hours aur challenging conditions mein kaam karte hain taki baaki sab log apni zindagiyan peaceful tarike se jee paaye. Now it's easy to forget the people working quietly in the background until we are reminded of their role. Days like today I think gives us that opportunity to just pause and simply appreciate them. So from all of us at Musti Media Network Singapore, a heartfelt happy Singapore Armed Forces Day to every serviceman, woman and national serviceman. Thank you for your service, thank you for the dedication and for keeping Singapore safe. Aur isi baat ke sath I think, you know, we should play something. Jab maine is bare mein socha to bas mujhe इसी गाने का ख्याल आया. सो लेट्स गो.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: and welcome back radio masti 24/7 live par 6:30 नहीं 6:31 हो चुके हैं यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक का अपडेट लेते हैं इस घंटे का व्हीकल ब्रेक डाउन जो है आपको मिलेगा PIE towards Changi after Angyo Avenue हैवी ट्रैफिक की खबर PIE पर towards Changi between KPE and Thompson Road और मिलेगा व्हीकल ब्रेक डाउन ऑन KJE towards BKE बिफोर संगाई देगा सो ये इस घंटे का कुछ ऐसा था ट्रैफिक का अपडेट बट उसी के साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जिनसे मुझे करना है आपको अपडेट व्हाइल आई ब्रिंग दैट बैक आई थिंक वी शुड गो एंड लिसन टू दिस रियली रोमांटिक ट्रैक एक टाइम था जब मैं इस गाने से ऑब्सेस्ड थी ऑब्सेस्ड मतलब टू द लेवल में कई दिनों तक मैंने ये गाना सुना है मैंने इसको अपने रिंगटोन भी बनाया हुआ है इट इज फ्रॉम द मूवी राज 2 एंड मानना पड़ेगा आपको यार ये गाना है तो अच्छा है हाँ सोनू निगम की आवाज और रोमांस जब ये दोनों चीजें होती है ना तो फिर वो मैजिक ही होता है लेट्स गो

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: You know, one of the many reasons that I love Singapore is the weather. Okay, ठंड नहीं पड़ती यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. I somehow, oh my god, ठंड जो है थोड़ी सी बर्दाश्त टाइप नहीं होती है, but well, यहाँ पे तो वैसा कुछ होता नहीं है. So I love it, love it, love it, love it. उसके अलावा जहाँ पे पूरी दुनिया, यू नो, आप यूरोप जाओ वहाँ पे गर्मी गर्मी की बात हो रही है, चीजें पिघल पिघल के गिर रही है, लोग यू नो एसी स्टोर्स एंड मॉल्स में जा जाके जो है वहां पर अपना ठंड की राहत जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं. इंडिया में अगर आप नॉर्थ ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो आप वहां पे पूछ लेंगे, हमारे कानपुर में, भोपाल में और ये सारी जगहों पर बड़ी गर्मी पड़ रही है जी, बड़ी गर्मी पड़ रही है. बट लेट अस टॉक अबाउट सिंगापुर जहां पर गर्मी तो है ही, थोड़ा सा ड्राई स्पेल का भी जो है फोरकास्ट जो कहा जा रहा है, बट बीच बीच में यहाँ पे थंडरी शावर भी आते रहते हैं. दैट्स व्हाट जो है मेट्रोलॉजिकल सर्विस जो है उनका फोरकास्ट कहता है. फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई शॉर्ट थंडरी शावर्स जो है एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, बट ड्रायर कंडीशंस कहा जा रहा है मे किक इन. और ये जो है थंडरी शावर्स लोकलाइज्ड होंगे इन द लेट मॉर्निंग्स एंड द आफ्टरनून्स फर्स्ट फोर्टनाइट में कहा जा रहा है. हाउएवर ऑफ कोर्स ये जो ड्राई एंड ओकेजनली विंडी डेज जो है इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ वो भी बिल्कुल आ सकता है. सो वेल, ये रहा आपका वेदर का फोरकास्ट. बट उसी के साथ साथ गाने का कुछ ऐसा फोरकास्ट है कि अभी थोड़ी देर पहले सोनू निगम का गाना सुना और आई टोल्ड एवरीवन कि I was obsessed with this gana. While I was listening and humming along that song, there was another Sonu Nigam ka gana jo mujhe bahut zor se aaya, bahut hi zor se aaya. And I was like, I can wait till tomorrow because hamara 90s wala show jo hai wo kal hai, udhar play kar sakte hain. Lekin kya hai na ki jab aa raha ho zor se to usko us waqt कर देना चाहिए. यही बात हम सबको बोलते रहते, बांटते रहते डियर मस्ती दिल से शो पर कि जो जब समझ में आ रहा हो ना वो बिल्कुल रिग्रेट नहीं होना चाहिए. सो कमिंग अप इज अनदर सॉन्ग वी ऑल हैव बीन ऑब्सेस्ड विद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई एम टेलिंग यू यू विल लव दिस एज वेल उतना ही जितना आपने इसके पहले वाले गाने को किया था. लेट्स डू इट, लेट्स डू इट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड.

मैंने कहा कि मुझे जोर से सोनू निगम आ रहा है, और बोल के मैंने ये गाना प्ले कर दिया। कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ गए कि बाहर का मौसम और ये गाना, ओ हो, मार ही डालोगी क्या तुम अंतरा। और उसके बाद यहाँ पे तुरंत रेणुका का मैसेज आ गया कि अब तो हमारा भी चला दो जानवर, है ना। और रेणुका का वही गाना, वही गाना जो मैंने उनके टॉप चार्ट से उठा के बाहर फेंक दिया था, बाहर ही फेंक दिया था मैंने। बट वेल, अब मौसम है, दस्तूर है, और भाई बॉस है, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत डेडली है। सो रेणुका का फेवरेट फेवरेट वाला गाना है वी गो, जाइए सजना। रेणुका मैं गाऊं, मेरी आवाज में भी बुरा नहीं लगेगा वैसे। गुड इवनिंग।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
4: क्या जी?
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी क्या बात जी।
5: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
6: They were not chosen. They were created.
7: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
8: Alpha.
9: Alpha. Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
10: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई।
9: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
11: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta hai.
9: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: I love every bit of Alia Bhatt and Sharvari in this movie, Alpha. I mean, have you seen the trailer? If you have not, you should. I think jis din trailer release hua tha, usi din maine apne show pe baat ki thi that how impressed I am and how glad I am that YRF jo hai, Yash Raj Films ne apne spy universe mein female do bandiyon ko leading mein role mein rakhkar ekdam maze hi ye spy universe got an upgrade like no tomorrow. Seriously, वाला। बट वेल, मिडवीक ब्लूज में और करते हैं थोड़ी सी इसकी बात।
12: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: हाँ जी हाँ जी, मूड तो वैसे भी चेंज हो जाता है जब वेंसडे का दिन आता है क्योंकि हम ऑलरेडी वीकेंड वाले मोड में चले जाते हैं। सो वेल, आई हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू टेल यू एज वेल फॉर द अपडेट्स, बट वेल अल्फा के बारे में पहले बात कर लेते हैं। शर्वरी एंड आलिया भट्ट तो है ही है, बट इसमें आपको हमारे बॉबी पाजी यानी कि बॉबी देओल एंड झकास अनिल कपूर वो भी नजर आएंगे इन अमेजिंग अमेजिंग रोल्स। नाउ अल्फा इज काइंड ऑफ द सेवेंथ आई थिंक इंस्टॉलमेंट YRF के स्पाई यूनिवर्स में एंड इट मार्क्स बॉलीवुड का फर्स्ट फीमेल लेड हाई ऑक्टेन एक्शन स्पेक्टिकल। ओके, एंड देर हैज अ लॉट, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जो है इसके पीछे गई है। देर वॉज दिस इंटरनेशनल फाइटिंग स्टंट मास्टर जो है उनको बुलाया गया टू ट्रेन शर्वरी एंड आलिया एज वेल, सो दैट ये जो एक्शन सीक्वेंसेज है वो लगे एज रियल एज पॉसिबल। सो वेल, ये जो अल्फा का मतलब जितना मुझे ट्रेलर देख के समझ में आया कि एक एक जो है इट्स अ सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम, इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोल्जर्स को इनको जो है तैयार कर रहे हैं। देयर इज दिस सम फादर डॉटर डायनामिक व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन बॉबी देओल एंड आलिया भट्ट। उस अल्फा का टैटू जो है वो ग्रीक अल्फा सिंबल उसके आर्म में करा देते हैं एंड देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर। सो दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय शिव रावल एंड इट्स रिटन बाय श्रीधर राघवन एंड सोमिल शुक्ला। सो आई हैव अ लॉट to look forward for this movie. Glad, and I am so happy to tell you that Island Wide, 3rd of July, yani ki coming Friday, it's gonna get released, all thanks to Home Screen Entertainment, that they're getting this amazing movie yahan par. And yeah, bilkul jaake dekh ke aao, jana hi hai, abhi se bata rahi hu, I am going to watch it, that's for sure. Alpha, andar ka alpha jaag jata hai, jab jab alpha saamne aata hai, alpha saamne aati hai, for a change we will say alpha saamne aati hai. Good, so well, that was that, but right now I think alpha nahi, kahi aur, ek aur kisi ka favorite gaana yahan pe lag gaya hai, so let me play that on Radio Masti 24/7 Live, stay tuned.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: कर चेंज कर चेंज कर चेंज. Yes, yes, people are going to pick sides, my dear friend. Radio Mufti 24/7 live par Antrop ke saath aur yahan pe chal raha hai Midweek Blues. Dekhiye, pehle to aapko ye sare updates de deti hu. 7 baje ke us paar, by the way, hum log pahunch chuke hain aur major update is hafte ka kuch aisa hai that boss ne apna Friday free kar liya hai. Oh yes, that is right. Bhai Masti Top 20. I know you all enjoy that show. You really love that show which Renuka does. Kind of, you know, आपकी फ्राइडे इवनिंग्स जो है काफी अमेजिंग हो जाया करती थी. लेकिन अब हम जैसे कि इस बात पे बिलीव करते हैं कि धीरे धीरे हम वीकेंड को और भी इस तरफ खींचते हुए लेकर आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है हमारी बॉस यानी कि हमारी रेणुका, उन्होंने कहा कि हम थर्सडे को आएंगे, हम थर्सडे को आएंगे, हमारा वीकेंड थर्सडे शाम को शुरू होगा. तो भाई जब कोई इतनी अच्छी बात कर रहा हो तो उसको मना नहीं करते हो, स्पेशली जब पहली तारीख होती है ना, तो बॉस कभी बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता है. फॉर ऑल द एम्प्लॉयज आउट देयर, यस इट्स 1st of July, और बॉस भगवान है ब्रो आज की डेट में, तो उनका इतना सही जो डिसीजन उन्होंने लिया है तो वो हमें आपको अपडेट करना, अवगत कराना कितना जरूरी है. तो यस, टेकिंग ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, टुमारो इवनिंग मस्ती टॉप 20 लेकर बिल्कुल रेणुका आ जाएगी. इट हैज बीन मूव्ड फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे. अब आप पूछोगे तो फिर फ्राइडे शाम को कौन क्या करने वाला, ना ना ना मैं नहीं आने वाली हूं. तो मैं ठहरी प्रोग्रामिंग मैनेजर, तो मैंने भी अपना थोड़ा सा वैसा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और दिखाई भी साथ में, और कहा कि मुग्धा आई थिंक ये तो तुम्हारे शो की जगह जो है हमने रेणुका को शो कर दिया है. तो मतलब इट्स क्वाइट नेचुरल कि यू नो फ्राइडे वाला जो अमेजिंग शो है, शाम वाला स्लॉट अब तुम्हारे नाम. सो यस, मुग्धा इज गोइंग टू बी देयर, मस्ट ही हैंग आउट लाइक अ फ्राइडे शो, बिकॉज सो इट्स गोइंग टू बी अनदर अमेजिंग वन, बिकॉज उसकी फील भी बहुत अलग होगी. इट्स फ्राइडे आफ्टर ऑल, राइट? सो ये मेजर एक अपडेट है इस हफ्ते का. आई थॉट दैट आई विल टेल यू अबाउट दैट. बट उसी के साथ साथ एवरीबडी इज लाफिंग ऑन मी राइट नाउ कि हाँ हाँ पहली तारीख को कोई पंगे नहीं लेता ब्रो, ऐसा मतलब चलता नहीं है, जिंदगी चलानी है, एडल्टिंग भी करनी है, बिल्स भी भरने हैं, है ना, ये सब करके कुछ नहीं होगा. फिलहाल के लिए बिफोर आई मूव ऑन एंड गो फॉर अ ब्रेक ओवर हियर गाने वाला, आई विल बी बैक एंड आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट कौन किसकी साइड ले रहा है. भाई रणवीर सिंह एंड डॉन 3 वाला अभी भी चल रहा है, बट पीपल आर नाउ एक्चुअली कमिंग आउट एंड टेकिंग क्लियर साइड्स. एंड ये कौन सी साइड है, रणवीर सिंह के साइड है और नॉर्थ के साइड है, उसके लिए जानने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: 3, 2, 1।
0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: गानों का नलका जो खुलता है ना, बाय गॉड, आई नो व्हाट यू मीन व्हेन यू से दैट। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव परंतराप के साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज। बट देन फर्स्ट लेट मी टेल यू, क्विकली टेल यू, इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर द लायन सिटी चैलेंज, यू स्टिल गॉट टाइम। इससे पहले कि मैं ये बोलना शुरू करूँ कि भाई रजिस्ट्रेशन सब क्लोज हो चुकी है ना, लाइन लिख के भेज दो इफ यू लव क्विजेस, इफ यू लव आंसरिंग, इफ यू थिंक दैट यू नो यू आर देयर quite there, which I mean, आपको ये सारी चीजें और अपना knowledge flex करना काफी अच्छा लगता है, that this is your chance, this is the मौका we are giving you. So all you have to do is first stage को cross करने के लिए LION line कर दो, भेज दो, और फिर उसके बाद हमारी team आपको दो सवाल भेजेगी, सही जवाब आप दे ही दोगे क्योंकि of course you are very good in this. उसके बाद जो है सही जवाब भेजने के बाद then you move on to the qualify to the next round where you get the application form, there's an application fee, ये सारा चीज कर हुए फिर फाइनली आप उस स्टेज पे पहुंचोगे जहां पे यू विल बी देयर फॉर द स्मार्टेस्ट गेम शो एवर, लायन सिटी चैलेंज, दैट्स ऑल इट इज। और अब यहां पे जो मैं कह रही थी कि नलके खुल गए हैं, अब गहरा हुआ का जो है डिमांड आ गया है, क्या करें बताओ बताओ। पहले ये गाना सुनेंगे उसके बाद गहरा हुआ सुनेंगे, ठीक है सलमा, ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7:26 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रॉप के साथ एंड यहां पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज, लेकिन इस वक्त हो चला है कि आपको ट्रैफिक का अपडेट दिया जाए। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन सीटीई टुवर्ड्स एवाईई आफ्टर एएमके एवेन्यू 5। एक और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन एवाईई टुवर्ड्स टुवर्स आफ्टर टुवर्स बेस्ट ड्राइव अवॉइड करें लेन नंबर 2। और एक और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन पीआईई टुवर्ड्स चांगी एट चलान अनाक बुकेट एंट्रेंस। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। यहाँ पर सलमा मेरे को पुच्चियां भेज रही है, हग्स भेज रही है, क्योंकि मैंने उसका गाना भी थोड़ी देर पहले जो है वो प्ले किया। दिस वाज जस्ट यू नो, इसने तो मेरे को कहा था कुछ और चलाने को, मैंने कहा कि ये वाला चला देते, क्योंकि बाकी जो हमारी 90s वाली डिमांड है ना वो कल की डेट में पूरी हो जानी है। यू नो व्हाट आई मीन? यस ऑफ कोर्स यू नो व्हाट आई मीन। बट फिलहाल यहाँ पे मामा मामा शुका, दिस इज ऑल्सो नॉट अ बैड सॉन्ग एक्चुअली, एंड इट हैज इट्स ओन वे ऑफ ग्रोइंग ऑन टू यू। मतलब ये वैसा वाला गाना है कि सडनली आप भरी दोपहर में ना अपने कॉफी ऑर्डर की होगी और उसका वेट कर रहे हो और इधर उधर ताक रहे हो और ये गाना गुनगुनाना शुरू कर दो, एंड देन यू वंडर लाइक व्हाई वेयर डिड दिस सॉन्ग कम फ्रॉम हियर, बिकॉज आई प्लेड इट क्वाइट अ लॉट।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: हाँ तो किस नली किसकी साइड, आइए करते हैं पर्दाफाश. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंदर आपके साथ एंड यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. भाई ये डॉन 3 का एग्जिट क्या हुआ उसके बाद से, और जब से धुरंधर ने बिल्कुल मचा दिया बॉक्स ऑफिस में, एवरीथिंग हैज बीन लाइक, हालांकि कोई हमें बात नहीं कर रहा है, बट क्लियरली नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल आर ओपनली टेकिंग साइड्स. ठीक है, बट इस साइड में फिल्म बॉडीज के साइड तो मुझे बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द साइड ऑफ रणवीर सिंह, एटलीस्ट जो कुछ कुछ मेरे सामने जो है आए हैं. फॉर द फर्स्ट वन, हमारे सुनील शेट्टी साहब जो है उनसे पूछा गया, सी काम क्या है, बाकी ये जो है ना पापुराजी, क्या कहना है आपका, क्या कहना है आपका. तो सुनील शेट्टी जो है ही हैज कम आउट इन सपोर्ट ऑफ रणवीर सिंह एंड यू नो एंड ही वाज काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग एक्चुअली द कल्चर ऑफ ब्लैकलिस्टिंग एक्टर्स, कि भाई हु आर यू टू बैन समवन एंड try and understand that this kid has given us 3500 crore ka revenue to the industry, why would you want to ban him. So basically inke Sunil Shetty ke kehne ke baad it has sparked a fresh kind of debate over whether creative professionals should face industry wide bans or not, with many praising his stance that dialogue is kind of a better solution than you know keh dena baad mein khud hi jaake press conference mein bolna pada unko ki bhai nahi hum to aisa nahi keh rahe the, hum ye mean nahi keh rahe the. Ami Virk jo hai, he also recently backed Ranveer Singh and he said that, you know, he also questioned why producers allegedly did not move forward with the project. Jab Ranveer was going through a string of box office ke setbacks. So he's saying ki jitne dino tak ye Dhurandhar nahi hui and Ranveer Singh was giving back to back some setbacks and not very good and flops movie de raha tha wo, तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया डॉन 3 के बारे में. द मोमेंट धुरंधर 3 स्टार्टेड एंड एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह, व्हाई डिड दिस कम अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड एक्चुअली ही हैज अ पॉइंट कम टू थिंक ऑफ इट. सो या कभी कभी होता है ना कि आप कोई ऐसी जज साहब वैसे लॉ वाली मूवी देख रहे होते हो एंड देयर इज दिस वन पर्सन हु आस्क दिस क्वेश्चन एंड यू गो लाइक ओ हाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ. सी देखिए, हो सकता है कि बात कंप्लीटली कुछ और भी हो यहाँ पर, मतलब कहानी में भी हम लोगों को सिर्फ यू नो सतह सतह पे जो है ना ऊपर ऊपर पता चल रहा है, वॉट एवर इट इज, मे बी इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बट देन वॉट एवर इट इज आपके सामने है, जहां जहां से जो जो जुगाड़ कर पाते हैं खबरें हम आपको जरूर बताते हैं. सो दैट्स वॉट इट इज. वेल आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर यू नो धुरंधर सॉन्ग्स, ऑलरेडी काफी सारे हम लोग प्ले कर चुके हैं यहाँ पे. देयर इज दिस न्यू सॉन्ग, इट्स नॉट न्यू ऑल्सो, इट्स अ रिक्रिएटेड वर्जन. दे हैव अडेप्टेड द सॉन्ग इन दिस मूवी कॉल्ड धमाल 4. यस, द फोर्थ पार्ट ऑफ धमाल फ्रेंचाइजी. ये आपने नॉर्मली सुना होगा इस गाने को, एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस गाना. ओके, इट्स गॉट अ नाइस ट्यून, इट्स गॉट अ नाइस वाइब एंड इट्स गॉट द गुलाबी साड़ी वाला थिंग. गो लेट्स लिसन टू इट टुगेदर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
1: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
6: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
0: वेलकम बैक, रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ बिल्कुल, अंतरा आपके साथ यू ही बनी हुई है थोड़ी देर और, बिकॉज ऑफकोर्स थोड़ी देर में जो है वो वाली बातें कहनी पड़ेगी जो मुझे शो के एंड में कहनी पड़ती है। बट लेट अस गेट बैक टू आवर भाई मेरे भी ब्लूज का बैंड वैगन। भाई बहुत बहुत टाइम बाद जो है चीजें जो पता चलती हैं, एंड एक चीज जो है हमारे शाहरुख खान साहब के बारे में, एवरीबडी सेज दैट इफ he gives out a lot, like सब कुछ ही, मतलब तेको प्रॉब्लम है, तेको दिक्कत है करके, एंड देन ही डज अ लॉट फॉर दैट पर्सन। सो हमारी फारा खान जो है वो यू नो राइट, शी हैज दिस यूट्यूब चैनल एंड यू नो अपने कुक दिलीप के साथ वो अलग अलग सेलिब्रिटीज के घर पे जाती है। तो श्रेयस तलपड़े के घर में वो हाल ही में उनका एक एपिसोड था वेयर शी वेंट एंड not only Shreyas Talpade told what about Shahrukh, they were discussing about Shahrukh Khan and his you know personality and how is he, so there was a point of time jab Shreyas Talpade ko zarurat thi unko jo hai khareedna tha ghar। And he was looking for loan, so yeah, Shahrukh Khan kind of helped him out over there, but usi ke saath saath Farah Khan also said that you know jab happy new year ki jo hai happy new year om shanti om ka premiere tha and they had to go bahar gao foreign trip pe jana tha and she didn't have that much of money to take everybody on board bahar le jaye, yeah bhai 50 logo ko Dubai premiere ke liye हमारे शाहरुख खान ही डिड इट ऑल ऑन हिज ओन, लाइक अपना पैसा खर्च करके लेके गए थे कि नहीं ये मूवी हम सभी की है, प्रीमियर होगा तो हम सभी जाएंगे वहां पे, एंड या इट वाज दैट एज सिंपल एज दैट, दैट शाहरुख खान फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। दिल का बंदा जो है ना, एकदम ऐसा दिलदार टाइप एकदम, है ना, सारे शाहरुख खान फैंस कैसे एकदम स्माइल आती होगी ना आपके साथ। वेल इट इज व्हाट इट इज, और जब ऐसी बातें बाहर आती है तो अच्छी बातों को इस तरह से ही डिस्कस करते रहना चाहिए, जानना चाहिए लोगों के बारे में। वेल हमेशा पुंगी बजाते नहीं रहना चाहिए, हालांकि वो करने में भी अपना मजा है, बट नहीं, नॉट ऑलवेज राइट। कमिंग अप नेक्स्ट इज मिका सिंह अलोंग विद अमिताभ भट्टाचार्य ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

बेबी डॉल भाई, समय खत्म हो रहा है, गाना ही गाते रह जाओगी तुम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। ये मतलब पिछले दो शो से हो रहा है कि आखिर में आते आते मैं ऐसे गुम हो जाती हूँ गानों में और मैं खुद ही गा रही होती हूँ, एंड सडनली मुझे रियलाइज होता है ओ अच्छा भाई 7:57 हो गए हैं, अगर तुमने अभी नहीं बोला है तो तुम बिना बाय बाय कहीं ही चले जाओगे और सब सोचेंगे कि हाँ अब 8 बज गए अब तो क्या ही आएगी लड़की, क्योंकि ट्रेन तो आप बहुत ही बढ़िया हो गए हो है ना, वो पता तो आपको सभी चल गया है कि ओहो हो अभी तो ये घंटे वाला वो आएगा ना, मतलब अब तो क्या ही हो सकता है। वेल एनीवेज कल मुलाकात होगी, कल है हमारा ऑफ कोर्स 90s वाला शो मस्ती 90s मिक्स टेप पे, बहुत सारी ऐश बहुत सारी यादों को ताजा करेंगे एंड या बाकी की बातें कल करेंगे। ठीक है, यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड, आई होप यू एंजॉयड द शो बिकॉज आई डिड, आपके साथ बताया हुआ हर पल, आई लव इट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभलना।
1: हवा के साथ

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के कभी मोहताज नहीं होते। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारुज है अक्का सिंगापुर मारुज है, मैं हूँ समर, रेडियो 24/7 लाइव पर कर रहा हूँ आपका स्वागत, आप सभी का इसी शो पर जिसका नाम है लेजेंड्स रेडियो 24/7 लाइव की ये बेहतरीन प्रस्तुति, एक ऐसा शो जहाँ आपको अलग अलग हस्तियों की कहानियां इंस्पायर करती हैं। और आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो ऐसे इंसान है जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी उस कम्फर्ट जोन को अपने ऊंचे मुकद्दर के बीच नहीं आने दिया, जिन्होंने ये नहीं सोचा कभी कि सब कुछ तो है, अब और क्या किसी चीज के पीछे मेहनत की जाए, बल्कि ये सोचा कि जो है इसे और मुकम्मल कैसे बनाया जाए। इनका ये मानना है कि उनकी कंट्री इंडिया में दून और मेयो जैसे स्कूल्स गरीब बच्चों के लिए भी होने चाहिए, जो न सिर्फ इंडियन कंप्यूटर्स को इंटरनेशनल मार्केट में हाईलाइट कर चुके हैं, बल्कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और इस फील्ड में भी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। एनी गैसेस? चलिए अब आपको बता ही दिया जाए कि मैं बात कर रहा हूँ आज HCL के फाउंडर और चेयरमैन शिव नडार साहब की, और आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी सोच के बारे में जानेंगे, और जैसे हर बार लेजेंड्स की शख्सियत से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, इनकी कहानी से भी कोई नई सीख लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेजेंड्स शिव नडार की कहानी, लेकर हाजिर है समर, आप बस सुनते रहेगा रेडियो 24/7 लाइव पर लेजेंड्स की अचीवर्स सीरीज़।

0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: वेलकम बैक लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में एक बार फिर से मैं समर कर रहा हूँ आपका स्वागत। और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ शिव नाडार साहब से। नाडार जी का जन्म हुआ 14 जुलाई 1945 को शिवा सुब्रमण्यम और वामा सुंदरी देवी के घर में। ये पैदा हुए तिरुचेंदूर तमिलनाडु में। इनके माँ बाप को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा बड़े होने के बाद फादर ऑफ आईटी के नाम से जाना जाएगा। जिस चीज ने शिव नाडार को आगे बढ़ाया वो उनकी कुछ बेहतर करने की लालसा थी। उनका हमेशा से सपना था कि वो खुद की कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करें और उनके इसी सपने ने और कई जिंदगियां बना दी। तो ये सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ कि शिव नाडार ने अपनी पढ़ाई पूरी की पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से, बैचलर्स डिग्री हासिल की वहां से इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की वालचंद ग्रुप्स कूपर इंजीनियरिंग से 1967 में। लेकिन जल्द ही वो नॉर्थ में मूव कर गए और उन्होंने काम शुरू किया डेली क्लॉथ मिल्स यानी डीसीएम में, जहां पर उन्होंने कैलकुलेटर डिवीजन में एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया। लेकिन उनकी खुद की कंपनी की शुरुआत करने की ललक उन्हें हमेशा बनी रही और वो इसकी बात डीसीएम में उनके साथ काम कर रहे 6 और कुलीग से करते रहते थे। उनकी बातों से उनके ये 6 दोस्त काफी प्रभावित हुए और उन सब ने डिसाइड किया कि वो सब मिलकर एक नए फ्यूचर में कदम रखेंगे। और वो फ्यूचर न सिर्फ इनका था बल्कि इंडिया का भी बन गया। और इसके चलते इन सब ने साथ मिलकर एक डिसीजन लिया। वो क्या डिसीजन था ये मैं यानी समर आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में यहीं पर। यह रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां आप सुन रहे हैं लेजेंड्स में शिव नाडार की कहानी समर की जुबानी। सुनते रहिए

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: कदम उठाने से ही मंजिलों के रास्ते मिलते हैं, बस एक कदम उठाने का हौसला होना चाहिए। और ये हौसला अब एक में नहीं था, पांच और लोगों में था, जो कि शिव नाडार के कोलीग्स से बिजनेस पार्टनर्स बन गए थे। ये थे अजय चौधरी, अर्जुन मल्होत्रा, सुभाष अरोड़ा, डीएस पुरी और योगेश वैद्य, जिन्होंने 1976 में डीसीएम क्विट किया और माइक्रोकॉम्प लिमिटेड की शुरुआत की। इन सभी ने इस कंपनी को चलाने के लिए दिन रात एक कर दिया और टेली डिजिटल कैलकुलेटर्स बेचना शुरू किया, जिसका ब्रांड नेम था टेलीविस्टा। शिव नाडार चाहते थे कि कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने से पहले उनकी टीम इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि वो आराम से काम शुरू कर पाए। और 1976 में ही उन्होंने अपनी कंपनी का नाम HCL रखा, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जिसको सेटअप किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की दी गई जमीन पर, जिसका कैपिटल था 1,87,000 रुपए, जो कि फाउंडिंग ग्रुप ने ही इकट्ठे किए थे। शिव नाडार इकलौते ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम्स की इंडस्ट्री इंडिया में एस्टेब्लिश की है। वो कहते ना, समवंस लॉस इज समवंस गेन। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने MNCs को इंडिया से जाने के लिए बोला, तब IBM के इंडिया छोड़ने से HCL का काफी फायदा हुआ और वो अपने काम को अगले लेवल तक ले जा पाए। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए जुट जाती है। लगता है यही रूल यहाँ काम कर गया और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। आगे जानेंगे कि HCL के साथ शिव नाडार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ लेकर गए। आप हैं समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सुनते हुए लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में शिव नाडार की कहानी मेरी जुबानी।

पानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो, जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: 1/2 kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: HCL, नाम तो सुना ही होगा, और इस नाम के पीछे एक और नाम है शिव नाडार का, जिन्हें लोग इंडिया में आईटी के फादर मानते हैं। 1976 में शिव नाडर ने अपने 5 और दोस्तों के साथ मिलकर HCL की शुरुआत की और अगले ही साल उन्होंने इस पहल के जोश को प्रूव भी कर दिया। अगले साल डेवलप हुआ इंडिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर और 1980 में ही शिव नाडर ने सेट किया फार ईस्ट कंप्यूटर्स इन सिंगापुर, यहीं पर, ताकि उस रीजन में भी हार्डवेयर की सेल की जा सके। एक साल के अंदर अंदर कंपनी ने 10 लाख का फायदा कमाया। नाडार ने सिर्फ बिजनेस को ही तवज्जो नहीं दी बल्कि एजुकेशन को भी काफी इम्पोर्टेंस दी, और वो बखूबी जानते हैं कि एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। वो कहते हैं कि एजुकेशन इज एंड विल बी द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल चेंज, एंड वी मस्ट डू ऑल दैट इट टेक्स टू फैसिलिटेट इट। उनकी यही सोच उनको तो अपने काम में आगे लेकर गई ही, लेकिन सोसाइटी का भी इस सोच से कल्याण हुआ और 1981 में कंप्यूटर एजुकेशन की ग्रोइंग नीड को पूरा करने के लिए इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIIT की शुरुआत हुई, जिसमें 2003 तक नाडार साहब सबसे बड़े शेयर होल्डर रहे। और NIIT के साथ उनके एक और सपने की शुरुआत हुई, टू गिव क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक और पहल की जिससे टेक्नोलॉजी के मार्केट में बूम आया। जानेंगे थोड़ी देर में क्या हुआ था वो ऑन द शो। लेजेंड्स आप हैं समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, सुनते रहिए।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: हौसले बुलंद हों तो आसमान भी ऊंचा नहीं। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आप हैं समर के साथ, वेलकम बैक। ये है रेडियो 24/7 लाइव सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। और आज मैं आपको शिव नरार साहब की कहानी सुना रहा हूँ। एक ऐसी शख्सियत जो HCL के फाउंडर हैं, शिव नरार। नरार जी का मानना है कि अगर आप अपने एम्बिशंस को लेकर शांत हैं, काम हैं, धीर गंभीर हैं, तो आप वो कर पाते हैं जो आपने करने की ठान ली है। और उनकी यही बात शायद उन्हें एक के बाद एक काम दिलाती गई और उनकी कंपनी HCL आगे बढ़ती गई। उन्हें ये पता था कि अगर उनके इरादे अटल हैं और वो बड़ी ही कामली उन पर डटे रहे तो वो अपने सपनों को चेज करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और वो आगे बढ़ते गए और ऊपर वाला उनके लगन और चाह को देखते हुए रास्ते बनाता चला गया। और तभी तो 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने कंप्यूटर मार्केट में इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी परमिट कर दी। और इसी के साथ शिव नडार और उनके साथियों ने एक नया मौका देखा और HCL दुनिया के कोने कोने में गई कंप्यूटर पार्ट्स सोर्स करने के लिए। और इसी के साथ उन्होंने लॉन्च किया बिजी बी, अ पर्सनल कंप्यूटर रनिंग अ नेटिव यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द कंपनी। और अगला कदम उन्होंने उठाया US की तरफ। और इसी के साथ आया HCL अमेरिकन मार्केट कॉन्कर करने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि अब तक अगर चीजें स्मूथ चली थी तो आगे भी चलती। आखिर बिजनेस में प्रॉफिट्स हैं तो लॉसेस भी हैं, और लॉस देखे बिना कोई कंपनी ग्रो कर ही नहीं सकती। शिव नडार का लिया गया ये कदम गलत एस्टिमेट दे गया और दुनिया के सबसे बड़े मार्केट अमेरिका में शुरू किया गया ये वेंचर फेल हो गया। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि गिरते हैं शह सवार ही, मैदान जंग में वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इस फेल्योर ने शिव नडार को और हिम्मत दे दी और अब डबल जोश के साथ वो आगे बढ़ते नजर आए। लेजेंड्स आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आगे की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, यहीं सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये शो आपको कैसा लग रहा है हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर बताइए।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो। समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आपको पता है HCL की शुरुआत हुई थी दिल्ली में एक छोटी सी बरसाती यानी शेड से, और आज HCL की वर्थ है $8.52 बिलियन। लेजेंड्स पर आज हम जान रहे हैं HCL के को-फाउंडर शिव नडार के बारे में, और 1989 में HCL को USA ले जाने के बाद जब मामला फ्लॉप हुआ, तब शिव नडार ने हार नहीं मानी, बिकॉज ही न्यू इट वेरी वेल कि देयर इज नो प्रॉफिट विदाउट लॉस। लेकिन 1991 में HCL ने HP के साथ पार्टनरशिप की और फिर कंपनी ने प्रॉफिटेबल रेवेन्यूज देखना शुरू कर दिए। इस जॉइंट वेंचर के थ्रू सॉल्यूशन बिल्ड किए गए ताकि लोकल कंप्यूटिंग मार्केट को टारगेट किया जा सके, और फिर मिड 90s में आया वो टाइम जब शिव नडार ने एंट्री ली एक सेल्स अग्रीमेंट में नोकिया और एरिक्सन के साथ, ताकि इनके प्रोडक्ट्स इंडिया में सर्कुलेट हो सके। 1995 तक HCL के पास 40 सब्सिडरीज थी, और फिर नडार जी ने फोकस IT हार्डवेयर से मूव करके IT सर्विसेज की तरफ कर दिया, और फिर बनी HCL कंसल्टिंग IT सर्विसेज और रिसर्च और डेवलपमेंट को एड्रेस करने के लिए, जो कि HCL और HP का मर्जर थी, एंड वॉज नेम्ड HCL कंसल्टिंग, जिसे 1996 में HCL टेक्नोलॉजीज के नाम से रीनेम कर दिया गया था। ये वही साल था जब HCL और HP का जॉइंट वेंचर खत्म हो गया था। 1998 की शुरुआत तक शिव नडार ने अपने बिजनेस को 5 कंपनीज में तब्दील कर दिया था, HCL टेक्नोलॉजीज, HCL इंफोसिस्टम्स, HCL कॉमनेट, HCL पैरोट एंड NIIT। लेकिन आगे फिर एक बदलाव आया जिसने इस कंपनी को एक नया रुख दिया। अब वो बदलाव अच्छा था या बुरा, जानेंगे थोड़ी देर में इसी शो पर। मैं हूँ समर, मेरी जुबानी, आप सुन रहे हैं शिव नडार की कहानी। सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
6: The only constant in the life is change. और यही जिंदगी का सच है। घर हो या काम, ये रूल हर कहीं अप्लाई होता है और इंसान की बेहतरी इसी में है कि इस रूल को जितनी जल्दी हो सके समझ जाए। वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। देखिए, गानों के बदलाव के बाद मैं हाजिर हो गया हूं लेकर शिव नडार साहब की कहानी। शिव नडार साहब इस रूल से बहुत अच्छे से वाकिफ थे और तभी जब 1998 में HCL के वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स में से एक अर्जुन मल्होत्रा ने कंपनी छोड़ी, तो शिव नडार के दिमाग ने घबराहट में काम करना बंद नहीं किया। इनफैक्ट ही टुक अप हिज चैलेंज प्रीटी वेल और इस लॉस को बैलेंस करने के लिए उन्होंने HCL को 1999 में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया ताकि कंपनी के फंड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न हो। एंड दिस इज अ साइन ऑफ अ स्मार्ट बिजनेसमैन। सिर्फ यही नहीं, HCL इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑर्डर्स मैनेज भी कर रहा है। शिव नडार अपने कस्टमर्स के फेवरेट रहे क्योंकि वो अपने कस्टमर्स की बिजनेस नीड्स को हमेशा समझते आए थे और उन्हें हमेशा एप्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की उन्होंने, और इस तरह कस्टमर्स को उनके पैसों की वैल्यू हमेशा मिलती रही। यही वजह है कि उनकी कंपनी और उनके कस्टमर्स के बीच एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन 2001 में इंटरनेट ने जैसे ही मार्केट में एंट्री ली, HCL अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी पीछे रह गया क्योंकि इस एंटरप्राइज में वो सब काफी आगे निकले टू क्रैक द एप्लीकेशन सर्विसेज। लेकिन शिव नडार ने 2000 से 2006 के बीच खूब एक्विजिशंस और पार्टनरशिप डील्स की और कंपनी को ग्लोबल सॉफ्टवेयर वेंचर बना दिया। लेजेंड्स की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में आपका तारुफ शिव नडार साहब से करवाते रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद इन बेहतरीन गानों के बाद। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शो कैसा लग रहा है हमारे फेसबुक पेज पर आकर बताते रहिए।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। आज शिव नडार की कहानी मेरी जुबानी। एक्विजिशंस और पार्टनरशिप की लिस्ट में 2001 में HCL की पार्टनरशिप हुई आयरलैंड में ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ, और साथ ही अग्रीमेंट्स हुए बोइंग, जापान बेस्ड NEC और डॉइचे बैंक के साथ। 2005 में जब HCL ने डॉइचे सॉफ्टवेयर और अपोलो कॉन्टैक्ट सेंटर को अक्वायर किया, उसका टारगेट था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट। लेकिन फिर भी HCL मार्केट में अंडर अचीव ही कर रहा था एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, और जल्द ही HCL के ग्रुप में 5 से 2 ही कंपनीज रह गई थी, HCL टेक्नोलॉजीज और HCL इंफोसिस्टम्स, जिसमें विनीत नैयर CEO बने HCL टेक्नोलॉजीज के और शिव नडार बने HCL के चेयरमैन और लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर, जिससे उन्हें मदद मिली कि वो डे टू डे कॉर्पोरेट अफेयर्स से दूर हो पाए और अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दे पाए। उनके इंटरेस्ट क्या? फिलैंथ्रोपी। HCL ने कंप्यूटर इंडस्ट्री को काफी कुछ दिया। इंडिया का पहला ब्रॉडबैंड होम PC, इंडिया का पहला पेंटियम 4 बेस्ड PC, और जब इंडिया में सिर्फ 250 कंप्यूटर्स हुआ करते थे, शिव नडार ने एक ऐसी टीम बनाई जो कि IT इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए पैशनेट थी। HCL हैज स्टेड अ ट्रू लीडर ऑफ कंटेम्प्रेरी कंप्यूटिंग। सिर्फ IT इंडस्ट्री ही नहीं, शिव नडार ने एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, लेकिन ये काम उन्होंने पैसों के लिए नहीं, अपना ख्वाब पूरा करने के लिए, जो कि था टू सी एन एजुकेटेड इंडिया। आप है मेरे यानी समय के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, सुनते रहिए लेजेंड्स में शिव नडार की कहानी मेरी जुबानी।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: 1/2 kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
3: क्या जी?
4: GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जिनसे मुश्किलें शर्मिंदा हैं। लेजेंड्स पर आप हैं समर के साथ और आज हम शिव नडार साहब की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। 1996 की बात है कि नडार साहब ने SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की शुरुआत की चेन्नई में अपने फादर शिव सुब्रमण्यम नडार के नाम पर, और वो इतने बिजी होते हुए भी आज भी कॉलेज की सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। 2008 में ही SSN ट्रस्ट ने यूपी में 7 स्कूल्स की शुरुआत की विद्या ज्ञान के नाम से, और ये स्कूल्स गांव के बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप देता है, और एक आध बच्चे को नहीं बल्कि ये स्कॉलरशिप कई 100 बच्चों को दी जाती है, वो भी यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों को। एजुकेशन को लेकर नडार जी का एक विजन रहा है और उनका मानना है कि एजुकेशन हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा एक पावरफुल टूल इंडिविजुअल्स और सोसाइटी को बदलने के लिए, और हमें हर वो कोशिश करने की जरूरत है जो हमें इसे फैसिलिटेट करवाने में मदद करे। उनकी इसी सोच की वजह से अपने इतने बिजी शेड्यूल में से वो वक्त निकालते हैं ताकि वो ये वक्त इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को दे पाए जहाँ के वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं। इसी के साथ उनके काम के लिए कई अवार्ड्स भी उन्हें दिए गए हैं, जैसे 1995 में उन्हें डेटा क्वेस्ट IT मैन ऑफ द ईयर मिला, 2005 में CNBC बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला, 2006 में उन्हें ऑनररी फेलोशिप ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन IMA मिला, 2008 में उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म भूषण मिला, 2009 में ही वॉज काउंटेड अमंगस्ट फोर्ब्स 48 हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी इन एशिया पैसिफिक, और 2010 में उन्होंने रिसीव किया डेटा क्वेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक जिंदगी और इतने अचीवमेंट्स जताते हैं कि ही इज अ मैन टू बी ऑनर्ड। बातों ही बातों में जाने का वक्त करीब आ गया है और पता ही नहीं चला देखिए, लेकिन इतनी जल्दी और आसानी से नहीं जाने का। हाँ, मैं तो भैया अभी आपको कुछ और भी बताऊंगा। किस तरह से शिव नडार अपनी पत्नी किरण नडार से मिले ये जानना तो बहुत जरूरी है। सुनिएगा यह किस्सा बस इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। कल्चर इज नो बैरियर फॉर शिव नाडार। जब कल्चर की बात आए तो वो इस मामले में डाइवर्स हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एक तमिलियन फैमिली का है जो अब दिल्ली में बस चुके हैं, और शादी भी उन्होंने एक पंजाबी फैमिली में की है। शिव नाडार के फादर जज थे और उनकी पोस्टिंग हर जगह हुआ करती थी, लेकिन शिव नाडार हमेशा अपने होम टाउन में रहे और उन्होंने कभी इंग्लिश में पढ़ाई भी नहीं की थी। लेकिन कॉलेज के जमाने में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग हर संडे शहर जाएंगे इंग्लिश मूवीज देखने के लिए, और इस तरह उन्होंने कुछ मेरे ख्याल 1000 इंग्लिश फिल्में देखी। 22 साल की उम्र में वो पहली बार अपने होम टाउन से निकले थे, एंड एट द एज ऑफ 23 वो अपनी वाइफ से मिले जो उस वक्त एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रही थी। दोनों को प्यार हुआ और इन्होंने शादी कर ली, एंड टुडे दे हैव अ डॉटर जिनका नाम है रोशनी नाडार, जो कि अब HCL की CEO हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। जस्ट लाइक हिज फाइनेंशियल वेल्थ, उनकी नॉलेज की वेल्थ भी काफी बड़ी थी, और यही वजह रही कि इट वॉज सो ईजी फॉर हिम टू एक्सेप्ट कल्चर्स wherever he went। शिव नाडार एक ऐसे इंसान हैं जो इस बात में भी यकीन करते हैं और इसे फॉलो भी करते हैं कि ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ेगा, और ये कई वजहों में से एक है कि उन्होंने सक्सेसफुली अपना बिजनेस 17 कंट्रीज में एस्टेब्लिश किया जहां 47,000 लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, और HCL की आज 500 से ज्यादा ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। अ मैन ऑफ पेशेंस एंड अ मैन ऑफ वर्च्यू। तो ये थी कहानी शिव नाडार साहब की। अब मुझे यानी समर को इजाजत दीजिए, आपसे मिलूंगा जल्द ही एक नई शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएगा, और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

से ये सलूक नहीं करते। आपने मुझ पर आग डाली, मैं आपके गले में डाल दूंगा। डर गए? अच्छा चलो माफ कर दिया,

0: सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
1: The

0: ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: जादू है, नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
3: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: अपने चाँ।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
2: चिनोई स्ट्रीट, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू सर।

0: फिर भी लगी दमना है।
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
3: रात।

संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का। तक दिना दिन तक दिना दिन तक।

0: है।
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: यू नो व्हाट, बहुत जोरों से मेरा ना एक पेट और परचेज करने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम ने मुझे ना पूरा का पूरा कन्विंस कर दिया है यार। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड डेफिनेटली शो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा मोबाइल फोन हमारी बातें सुन रहा है? मतलब जिस बारे में हम सोच रहे होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड सजेशन हमें ऑनलाइन मिलते जाते हैं, ऐसा क्यों? मैंने ना किसी से बस रिसेंटली बोला ही था कि मुझे पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, और ये बात कहने के साथ ही चीजें इतनी ज्यादा रिलेटेबल सोशल मीडिया पे निकल कर आ रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, सो मैं आज नुपुर डेफिनेटली रेडियो मसी 24/7 लाइफ पर कुछ और भी बातें करने आ गई है। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: यू नो वॉट, आज भी अगर हम शाहरुख सलमान और अमिताभ बच्चन जी का हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आया है जिसमें लगातार कई सालों तक इनकी मूवीज जो हैं वो फ्लॉप हुई हैं। बट ये डरे नहीं है, ये आगे बढ़ गए हैं। इन्होंने कहा ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता ही है ये कहाँ पहुंच गए हैं। बस इसी पद चिन्ह पे कौन चल रहा है? एनी गेसेस? हम कंगना रनौत। हाँ जी, मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, कंगना जो है वो अब सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, पॉलिटिशियन भी हैं और इसके साथ साथ अपनी एक्टिंग को बरकरार रख रही हैं। नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। लेकिन आपको पता है, अभी रिसेंटली जो इनकी मूवी आई ना, भारत भाग्य विधाता, उसने भी बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं किया। मतलब आप कह सकते हैं फ्लॉप रही वो मूवी। और उससे पहले लगातार इनकी 8 मूवीज, वो चाहे इमरजेंसी हो, तेजस हो, चंद्रमुखी 2 हो, धाकड़ हो, थलाइवी हो, सारी बैक टू बैक फ्लॉप रही हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 8 मूवीज इनकी लगातार फ्लॉप हो चुकी है। बट स्टिल कंगना ने होप नहीं छोड़ी है। इनको पता है यार, अच्छे काम करने से पहले थोड़े बुरे काम भी करने पड़ते हैं। हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ मैं आती हूँ जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। चलते फिरते ये जो आप बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं ना, कि चलो बर्गर खा लेते हैं, हॉट डॉग खा लेते हैं, ये नूडल्स खा लेते हैं, उससे अच्छा कि आप अपने बैग में ना कुछ हेल्दी स्नैक्स मंचिंग के लिए रखो। वो चाहे कैलिफोर्निया आमंड्स हो, प्रीमियम कैशियूज हो, पिस्ताचियोज हो, पम्पकिन सीड्स हो, मखाना हो, मतलब इतने सारे जब ऑप्शंस अवेलेबल है तो रखिए ना। हाँ, तो ये सारा आपको ऑर्गेनिक स्टफ मिल सकता है कहाँ? GGMartOnline.com पर, राइट? एंड उनकी स्पेशलिटी एक और चीज भी है, बताऊं क्या? एंड जी, आप कृषि फल नट्स ले सकते हैं, डेफिनेटली जामुन ट्राइंगल गुलकंद भी ले सकते हैं, एंड इस तरह के ऑर्गेनिक आपको सजेशंस मिलेंगे GGMartOnline.com पर जाकर। डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है हेल्दी ईटिंग से, जो आपको करनी चाहिए। आज इन पर मजी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
2: Alpha.
0: Alpha. Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया'स फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.
4: सिंगापुर prepare for impact.
5: 3, 2, 1.
6: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
7: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर.
8: आजकल वीडियोस देख कर ना बुरा भी लगता है और हंसी भी आ जाती है. फिर ये भी लगता है कि क्या चल रहा है दुनिया में. और इतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दुनिया के कोने कोने में लगा दिए गए क्या कि सारी चीजें हम तक आ ही जाती है. हाँ सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. अगर मैं बात करूं रिसेंटली एक सीसीटीवी फुटेज की, तो इंडिया से निकल कर आई है वो. उसमें क्या होता है, जैसे अपनी गली में नहीं आइसक्रीम वाले भैया लोग निकलते रहते हैं, टन टन टन टन करके घंटी बजाते हैं, और आप बस बाहर आके बोल देते हैं भैया ये जरा 5 रुपए की आइसक्रीम देना है ना. तो किसी शख्स ने ऐसा ही किया और उसकी जो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी थी ना वो रोड से थोड़ी नजदीक थी, है ना. तो जो रोड थी वो थोड़ी अपर लेवल पे थी और जो घर था वो थोड़ा बेसमेंट लेवल पे था, ठीक है. तो उस शख्स ने जैसे ही आइसक्रीम लेने के लिए अपने फर्स्ट फ्लोर से झुकना चाहा, और ज्यादा झुकता गया झुकता गया झुकता गया, भाई वो तो नीचे ही चला गया, मतलब फर्स्ट फ्लोर से गिर गया और आइसक्रीम भी हाथ नहीं आई. ओ भाई भाई भाई भाई, ये क्रेजी होते फूड लवर्स फूडीज. हाँ चलिए, ऐसी बातें निकल कल कल कर आती हैं और मैं आपको बताए बिना रह नहीं पाती हूँ. आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.